0: बना लो मेरा बलमा, और ये सुंदर सा गीत जो लिखा गया कि अपना बना लो मोरी बलमा, एक और गीत उसी का चलाता है, क्यों ना शायद अभी आ जाए जॉनी भाई आपके,
1: नहीं आएगा आवाज वही है तो नहीं आएगा
0: नहीं, शायद धुन कुछ और होगा, देखते हैं।

दोस्तों सुनने वालों, भाई जॉनी भी आश्चर्य में पड़ गए हैं। तो इसे बता देता हूँ जॉनी भाई कि हमारे गायकों में से मशहूर गायक जो सिरुनामक है, जो सबसे ज़्यादा गाना गाए से उनका भाई, बहुत सा गाना गाए हैं। अगर जब नाम चैतु कह लेऊं तो उनकर बहन, कितने बहनों उसकर गीत का गाना गाए हैं।

0: सत्या चाहे तू, सत्या त्रिबेनी चाहे तू, यूट्यूब से निकाला गया ये गीत और उनकर गाए हुए गीत है। उन्होंने बड़ा मंदिरों में और बहुत सा जगह गाते रहते हैं और उन्हीं का आवाज़ में ये सुंदर गीत है। पर बिल्कुल जैसे उनसे बात करेंगे आपको तो ये आवाज़ नहीं है।
1: देखिए हर एक लोग जो गीत को गाते हैं भाई संजय, तो उसका आवाज़ बदल जाता है,
0: आवाज़ बदल जाता है,
1: वो कुछ और आवाज़ जो बात करते हैं वो आवाज़ और गीत के आवाज़ वो दो हो जाते हैं। आप भी तो कराओगे करते हैं,
0: अब कुछ कुछ वहाँ भी कोशिश करो जा सीखे के
1: भाई क्या खाई हो फरकलाप। तो भैया संजय भी कराओगे गीत गाते हैं तो उसका आवाज़ भी वहाँ पर कुछ और है। मैं कुछ बताओ भाई ने संजय, आपकी रामलीला के बारे में कैसे बातचीत है?
0: भाई रामलीला तो यहाँ हॉलैंड में बिल्कुल बंद हो गया था ना, ये लास्ट यार लास्ट ये अफलोप दिशा नियम तो हो ही नहीं कुछ, और अभी यहाँ फिर स्टार्ट किया गया है। और जैसे कि सूरीनाम में अभी भी, सूरीनाम भी कम हो गया है, पर भारत में जो नवरात्रि से पहले तो जनवरी में शुरू हो जाता रिहर्सल करने लगते हैं, क्योंकि नवरात्रि में पहला नवरात्रि में जो मार्च अप्रैल में होता है तो वहाँ पर सभन अपना नवरोज के लिए अपने हर एक स्थानों पे, दिल्ली में हर एक स्थान पे और जा कर के रामलीला होता है। और ख़ास करके त्वेदा रामलीला जो जहाँ पर काबुल है दशहरा होता है, जहाँ पर रावण का और पुतला बना करके जलाया जाता है, तो वो तो हॉलैंड में 9 दिन तक यहाँ करना बड़ा मुश्किल हो गया है। पर अगर हम लोग सोचेंगे कि मुश्किल हो गया है तो मैं इस पे नहीं मानता हूँ, मैं इस पे नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम कुछ लोग भी इस समय सुन रहे हैं हम लोग के साथ, और मैं ये आशा रखता हूँ कि जिस देश में जॉनी सुरजबाली है वहाँ तो रामलीला ही करवाई के रखेगा।
1: पंडित साथ है। लेकिन भाई संजय एक बात और है, सूरीनाम में तो चलते हैं नवरोज, चलते हैं वहाँ रामलीला, और भारत में कैसे है वहाँ?
0: भारत में हर, देखो अब जहाँ मेरा परिवार रहता है

0: रहता है और हो जाता है 32-35। धीरे धीरे अगस्त तक गर्मी और थोड़ा 30 तक पहुंच जाता है और जुलाई के बाद में वहाँ रिहर्सल शुरू हो जाता है, सब अपना ओपनिंग शुरू करने लगते हैं। और ख़ास करके जहाँ हमारे परिवार रहते हैं वहाँ छत पे,
1: और छत पे होता है,
0: हाँ दुसैन
1: ओपनिंग होता है,
0: हाँ डाक पे, और लोग आ करके रिहर्सल करते हैं खूब। वहाँ मैंने बैठा था और मैं सुन रहा था, बातचीत हो रहा कि भीड़ भाड़, वैसे तो उतना भीड़ भाड़ नहीं, तो इस बात को पता चला कि वहाँ आप रामलीला का रिया जो हर साल करते हैं फिर भी हाँ। और ये है कि एक ही आदमी नहीं, उसमें वो है कि उसमें है कि दत्तर दो लोपेस जो इस साल, हाँ इस साल नहीं खेले, उसे मौका मिला तो अगले साल मिलेगा, और उसमें एक दूसरे को जोश देते हैं।
1: लेकिन वहाँ पर सब कहाँ खेलते हैं?
0: यहाँ वहाँ जो अपना परिवार है, क्योंकि वहाँ दिल्ली में एक रामलीला मैदान कहते हैं, अनहेल ओप प्लेक, जहाँ पर यहाँ के लोग भी जा करके वहाँ पर सम्मान को प्राप्त किए हैं कि यहाँ जो भाई बालादीन लोग जो नाटक आदि खेले हैं और वहाँ पर जा करके क्या कहते हैं सम्मान को प्राप्ति किए, वहाँ पर सम्मान खूब सम्मान किए हैं हॉलैंड से, क्योंकि भारत ये चाहते हैं कि हमारा सभ्यता संस्कृति और संस्कार ये बढ़ते जाए। अब देखा जाए मोदी जी आए हॉलैंड में तो सब बात सबको नहीं पता है, पर कुछ बातें हैं कि जो हम लोग सुन लेला कि हम लोग के हिंदी स्कूल जो यहाँ पर है 5 सनातन धर्म स्कूल और फाहोन के लेकर के 6 और शोन और फाहोन भी, तो वो इतना प्रशंसा हो रहा कि हॉलैंड में हो करके और ये सब कार्य को करते हैं, इट्स इट्स अंतरोत्स हमारे हिंदुत्व के लिए
1: क्लोट,
0: और वो फिशनू स्कूल के और प्रस्थान डाले, पर कुछ सेफ्टी प्रोटोकॉल होने के कारण मीडिया में ना आवे सब। और इसी प्रकार से अभी जब गुलनी हेलमाल अफवाई का फन जो प्रश्न रखे आपकी, हम रामलीला क्या करते हैं, क्योंकि इस बार हम लोग रामलीला खेलने वाले हैं जो अगले 5 आ रहा है, तो कोनिंग लकसौबर में यहाँ हम लोग को अवसर मिला है तो वहाँ पर रामलीला का कार्यक्रम होगा। तो ऐसा है कि वहाँ कुछ कार्यक्रम एरस्ट खदेलता जो खरातस है, तो इधर खदेलता में जो जिसके खाने पीने के साथ तो कुछ एंट्री भी लगेगा,
1: जरूर लगेगा,
0: पर ख़ास करके हम लोग के अति संविश्वंदर है दच हम लोग की हम अपना कार्यक्रम कौन निकल का स्वाओ बेरख में देख सकते हैं, तो खूब मन तन से काम किया जाए। और हमारे जो कलाकार है फाहोन स्कूल से जुड़े हुए वो लोग भी दिखाएंगे कि उसमें रामायण बहुत बड़का महासागर एक ग्रंथ है जो हम लोग के कितने ग्रंथ है पर महासागर है, और उसमें से एक छोटा सा झलक हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे।
1: अच्छा भाई, एक और सवाल है, आप तो यानी कि बखलाइदर हुए और सब करते हैं, मुझे एक डायलॉग सुना दो, आप तो सबके डायलॉग जानते हैं, सबके एक जबरदस्त डायलॉग आपके जो रामायण में है या मतलब कि रामलीला में है, आप हमें और हमारे जनता के तरी सुना दो।
0: उसमें मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा दिलचस्प लगता है, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं तो, वो टुकड़ा रामलीला का जिसमें हमारा लक्ष्य ये है कि राम और सीता का धनुष यज्ञ से उनका और कैसे सीता को प्राप्त किया, उसमें ये संदेश रखा जाता है कि हमारे बच्चों ओंस केंद्र वे इतफाक ओंस द फरहाल फन ओंसनी और वे खान फाक साम वो उन्हें क्या कहते हैं बच्चे हो जाते हैं, और उसके बाद में हम चाहते हैं कि अपने बच्चा का मुड़न संस्कार जरूर कराए, पर कुछ चीज़ है जो हमारे धर्म से, जैसे कि अभी हमने कहा

0: की सभ्यता, संस्कृति और संस्कार, इन तीनों चीजों पे पहले हमारे जो भारत को अखतिंद्रियन सैफन तक में छोड़ करके और भारत से गए सूरीनाम, तो सूरीनाम में जा कर के संस्कार को पकड़े रहे पहले, और जा कर के विवाह भी होते थे एक दूसरे के साथ, तो जिसे हम जानते ब्रह्म विवाह से, और वत ओंस जो हम लोग का संदेश है ये धनुष यज्ञ से, कि संदेश ये हम लोग रखना चाहते हैं कि हमारे बच्चों हमारे कहानी जाने, अपना जो फ्रिंद या फ्रिंदेन को जब वो वनेरत्सो फेर इस दन बोव्यस किस फनो, हमारा विवाह हुई और हमारा विवाह किस प्रकार से हुई। ब्रह्म विवाह होने से लव कुश जैसा पुत्र को जन्म होता है, और उसी कारण से फेल अख्तर है मुद्नित खान खलाइक ऑफ द नाम, मैं हमारा धर्म भी रहेगा, धर्म रहेगा इस कारण कि हमारा धर्म में हम लोग के कोई भी कार, हम लोग के जो कुछ संस्कार है 16 संस्कार है, तो 16 संस्कार में सब देखा जाए कि चार को पे हम लोग ज्यादा ध्यान देला। पहला वाला है जो मॉडर्न संस्कार, जबकि अभी तक हॉलैंड में हम लोगन गोरे लोग जो गर्भधान संस्कार ये सब कराते हैं अभी तक।
1: अच्छा,
0: वही माकनत नहीं
1: क्या?
0: पर हम लोग हिंदुस्तानी उस पर ध्यान नहीं देते,
1: नहीं।
0: और गर्भधान संस्कार, उसके बाद में और भी करण संस्कार सब, कान छेदाई वाला संस्कार सब हुए हैं, जनेऊ संस्कार, विवाह संस्कार, और लास्ट वाला संस्कार हुए है जब हमारा वो हाँ, पर फाक वो वाला जाना वाला तब बड़ा देर हो जाए, जब हम अपने जीवन में सोचते हैं हम जीवन को समझ लिए, पर जब समझने को आने लगता है तब जाने का वक्त हो जाता
1: है। हाँ,
0: तो दौरों खोजो पंडित।
1: लेकिन और आप एक डायलॉग सुनाते हैं,
0: अब मैं आप वही में से हम घुमा रहे थे आपको, पर फिर आप हमें लेकर उसी ओर ले जा रहे हैं। उसमें से एक डायलॉग नहीं, एक खदेलत जो हमें बहुत पसंद है।
1: अच्छा, सुना दो।
0: जहां पर परशुराम जी जो जा करके जब धनुष को टूट जाता है, तो वो अंदर आते हैं बड़ा क्रोधित होकर के, मैं क्रोधी हूं परशुराम के आवास, और परशुराम के आवास में आते हैं, और आप नाटक रामलीला वाला आदमी हो,
1: नहीं, नहीं।
0: आप वो करवाना चाहते हो, मुझ में वो है ही नहीं,
1: नहीं।
0: पर परशुराम बड़ा क्रोधित होकर के आता कि किसने ये धनुष को, किसने ये दुशासन किया है, ये धनुष जो शिव का धनुष है किसने ये तोड़ा है। तो उसमें बड़ा टड़क भड़क दिखाते हैं राजा जनक जी, जो अपने ओर से कहते कि ये ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी है, और लेकर के अयोध्या सुपुत्र राम लक्ष्मण को लेकर के यहाँ आए हैं, उपस्थित हुए हैं।
1: तो लक्ष्मण भी कुछ बोला था,
0: तो लक्ष्मण भी
1: तो
0: अपना
1: कौन से डायलॉग बोला था?
0: लक्ष्मण कहते कि कि बड़ा आप में बचपन में तो मैंने ऐसा ऐसा कितने सारे और धनुष को तोड़ दिए, तब आप नहीं आए थे तो आज क्यों आए, और इस प्रकार से छोटा छोटा बातें हैं। पर सबसे मूल्य हमें सबसे अच्छा लगता है इसमें से, जब ब्रह्म ऋषि जी जो उसे राम को आदेश देते कि जाओ और भगवान परशुराम को प्रणाम करो, तो राम जा करके भगवान परशुराम को प्रणाम करते हैं और नमन करते हैं, तब परशुराम जी कहते कि अरे वाह, मीठी मीठी बातों करके और मुझे भी अपमान भी कर रहे हैं, तो ये अब मैं भी थोड़ा गर्म होने लगा।
1: हाँ।
0: पर काफी
1: है
0: संदेश, बड़ा अच्छा लगता है।
1: अच्छा,
0: वो
1: जरूर, जरूर।
0: और देखने वाला चीज है,
1: देखो जब रामायण चलते या महाभारत चलता है, जो लोग जानते हैं और उसके बारे में आप बताते हैं, तो सब
0: हाँ
1: रामायणर होता है, वहाँ ये ऐसे था ऐसे था ऐसे था, कारण कि जो इतिहास है पंडित जी भाई संजय, इतिहास लोग बदल नहीं सकता।
0: पर ये हमारे कथाएं जो है ना,
1: वो बदला नहीं सकता,
0: पर वो ऐतिहासिक रकम से शायद लिखा हुआ है, पर इतिहास नहीं है, अतः जीती जागता कथा
1: कथा और बदल नहीं पाए।
0: हाँ, उसमें बदलाव नहीं आएगा कभी,
1: क्योंकि एक नाटक जो हम सब लिखते हैं या एक फिल्म बनाते हैं या एक गीत को हम गाते हैं भजन छोड़ाकर, तो उसमें आप कहीं पे थोड़ा लहसुन डाल देते हैं, कहीं प्याज डाल देते हैं, कहीं मसाला डाल देते हैं, कहीं मिर्चा डाल सकते हैं, लेकिन जो इतिहास है, जो हमारा वेद के है या कोई भजन की गीत है, उसमें आप कुछ बदलाव नहीं कर सकते। जो है आपको वही बताना पड़ेगा।
0: शायद धुन उसमें कुछ बदल सकता है, आवाज किसी का बदल सकता है, पर संदेश वही।
1: संदेश आप बदल नहीं सकते हैं। हम सब जो कीर्तन भजन करते हैं तो एक एक भजन भजन होता है। बीते हुए दिनों में हमने गए थे रुद्र मंदिर में,
0: रुद्रधाम
1: में, वहाँ पर हमने शिव चालीसा को गाए। जब शिव चालीसा हमने गाए तो उसके बाद में अब वहाँ कथा होने लगा, तो एक स्वामी जी व्यास पर बैठे थे, तो वही शिव चालीसा की कुछ कथाओं बताने लगा। तो जो जो वर्थ स्वामी जी बताने लगा वो सब वर्थ वो शिव चालीसा में मुझे मिला कि देखो इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। कारण कि हर एक भजन में, हर एक गीत में जो इतिहास का है वो सब में बहुत वजन है भाई। और जो नहीं समझेंगे तो सोते तो होने
0: गीत
1: है, ये गीत है,
0: पर उसमें से जो गहराई है, हाँ। जो उसमें
1: हाँ।
0: क्या कहते उसमें से जो निकालते हो, देखो कहते गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु बिना तो कुछ नहीं। तो गुरु जब संदेश उसी में से इतना गहराई निकाल ली एक ही। अब जैसे आप कहे कि शिव चालीसा में से एक ओर से संत, क्योंकि स्वामी ऐसा ही नहीं बन जाता, टीका ऐसा ही नहीं लग जाता,
1: नहीं।
0: जरूर कुछ है, कुछ लोग है जो ऐसा आदमी
1: नहीं
0: जाएंगे, पर संत मुनियों जो अपना दृष्टि डालते हैं तो उसमें बड़ा सुंदरता मिलता है,
1: बहुत गहराई है,
0: बहुत आनंद उसी से हम
1: प्राप्त। बहुत आप बस सुनते रहो और उसका अंत नहीं भाई। अब हनुमान चालीसा जब हम सब गाते हैं भजन कीर्तन के, तो हनुमान चालीसा में हर एक वर्ड जो है हनुमान जी के बहुत मूल्य है कि वो क्या क्या किया है, छोटे से लेकर जन्म से लेकर कहाँ तक वो गया, उसका 40 लीला उसमें बताए गए हैं, उसके गहराई बहुत। कितने लोग जो हनुमान चालीसा गाते हैं ऐसे थूक जाते हैं, लेकिन उसके गहराई में कभी जाओ तो देखो उसमें क्या क्या हनुमान जी किया,
0: वर्णन किया,
1: हाँ, वर्णन किया, हाँ। अच्छा ठीक है, तो कुछ हो गया है हम सबका आज रामायण के बारे में। आप बताओ रामायण तो आप रामलीला तो आप करते हैं, और आगे के प्रोग्राम क्या करेंगे, उसके बढ़ंटी तो होना चाहिए ना।
0: नहीं, बात ये है कि देखो भाई, अब शायद ये बात लाइफ हम लोग को करना चाहिए था, क्योंकि कुछ लॉयस्टराफ्ट से भी जो सुन रहे हैं, और इस पे जरूर मैं ये धरना चाहता हूँ कि कहीं भी जाओ रामलीला का बात होए तो उसमें से सबसे पहले होए है कि जॉनी के का हाल है, जॉनी का करे ही शायद। तब इसमें अब ये सवाल ही आप किए तो, और ये मत समझना कि ये हम जानबूझ के छोड़ रहे हैं, पर ये मेरा बात नहीं है। अब पिछले शुक्रवार को हम लोग यहाँ उपस्थित थे, तो आप इस बात को भी समझ गए होंगे कि हम और हैन जो हमारा टेक्नीशियन है बार बार एक ही ओर आपके घींच के ले जा रहे थे, और आप हम लोग से छोड़ करके दूसरा ओर निकल रहे थे, पर नहीं हमारे
1: बात नहीं करूं घुमा फिरा कर तो ही के लपेट। संजय भाई बताओ फाहुन क्या क्या करते हैं इस समय?
0: फाहुन रेडियो के बात बोल रहे या फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो? इस समय जो देखो आप सुबह से आज रेडियो लगे हुए हैं, फाहुन जो हमारे कोलेखा उसमें से मुझे कभी कभी कुछ वक्त मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं अपने आप को सबसे यंगस्टर कहलाता हूँ, तो उसे सबसे अच्छा लगता है बस वही बार पर हम सभी से कुछ ना कुछ सीखते हैं। और देखो फाहुन रेडियो का करो का ग्रुप जो है अभी एक बार लाइव नहीं आया, इस पे काम करना है और सब इंस्ट्रूमेंट जो हो चुके हैं स्टूडियो के जो करो का लाइव लाना है। पर हमारे जो सभापति है करो का ग्रुप का भाई गंगा जी जो रविवार को अभी आने वाला मेरे ख्याल से, क्योंकि आज आज सुरेन जी जो आज हाँ तो अभी आने वाले, पर उनके ओर से मैं देख रहा था व्हाट्सएप पे कि कौन कौन आ रहा है और फुल फुल हर बार फुल होते हैं, तो हर बृहस्पतिवार को यहाँ हमारे समय पे जो हम हमारा ज्योति का प्रकाश के समय पे स्टूडियो बंद करना पड़ता है क्योंकि वो दूसरा और स्टूडियो में हमारे सभी को कलाकारों जो करो को करते हैं। दूसरा बात ये है कि हमारे देखो हम लोगों में ये है जितना हमारे कोलेखा से सब कुछ ना कुछ और करते हैं। हम लोग कैसे बोले दो प्रकार के लोग होते हैं ना, एक इनर लोग होते हैं जो सिर्फ अपना परिवार अपना घर में अपना सब कुछ बढ़िया से चलाते हैं, जाते हैं नौकरी पे वो फिर वापस आकर के अपने बच्चों के लिए अपने बच्चे को साइकिल में हवा भरते हैं सब कुछ करते हैं अपने सिर्फ उस उसके लिए जीते हैं। पर ये फाहुन वाला को अवतर कहते हैं, ये अपने लिए नहीं जीते हैं, ये जीते हैं औरों के लिए, उसमें मजा लेते हैं उसमें। अब देखा जाए जॉनी सुरजबाली के जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, पर खोलांत में कई मंदिर में जो भजन गाते हैं ना कि भजन सिर्फ कहां खरोता अक्तिफिताइत होते हैं, तो आप जब वहां ना हो तो थोड़ा अधूरा पड़ जाए। अब देखा जाए अमारा में पिछले साल जो 8000 लोगों 8000 हिंदुस्तानी जो वहां पर आए और उसमें आपके कार्यक्रम कितना सुंदर रहा
1: भैया, अरुण
0: ब्रिज मोहन का कार्यक्रम रहा
1: सबको मिलजुल के किया, आप भी बहुत काम किया है।
0: नहीं हम लोग भी अपना काम करते पर कहते कहने की हम लोग सब कोई कुछ ना कुछ में लगा
1: अपने अपने अपने अपने काम सब किया है। और ऊपर में जो मंदिर आप लोग बनाए थे अमारा में वो तो हमने देख के दंग हो गया भाई, वो जो उतना बड़ा शिवलिंग थे
0: हाँ ना,
1: आप शौक पहिर के शौक में कोसू में और पूरा अमारा आपने चल कर और छान दिए।
0: अरे बस
1: साथे साथ
0: मस्ती मस्ती होता
1: साथे साथ शंकर भगवान के विवाह के भी कार्य आप बना दिए।
0: बस हो जाता है,
1: आप बहुत महान है भाई।
0: नहीं नहीं हमें नहीं, पर जो होना देखा जाए पिछले साल हम लोग आप भी थे वहाँ कि दिवाली का कार्यक्रम पौलकुरी को लान पे भाई हेमंत लक्ष्मण का कार्यक्रम, तो उन्होंने भी देखा जाए कि खूब मन तन से कितना बढ़िया कार्यक्रम बनाए और जा करके वहाँ हम लोग भी सहयोग दिए खूब मन तन से। और ऐसे हम लोग के हिंदू का कार्यक्रम कहीं ना कहीं देश में पिछले साल देखो आप तो उस समय सूरीनाम में थे पर सभी ये आशा रखते थे कि आप यहाँ होते, दमेरन में मूर्ति स्थापना हुआ 5 रोज का यज्ञ
1: जानते हैं उस समय हम सूरीनाम में रहे, वहाँ से हमने लाइव देखा आपको
0: हाँ।
1: और मंदिर को कैसे वहाँ कारोबार होता है,
0: तो देखो हम लोग ने
1: कितने रोज के प्रोग्राम वहाँ 4-5 रोज चला था ना,
0: 5 रोज का यज्ञ था
1: यज्ञ वहाँ में बुलाए थे भैया हैंक फोर्स इधर, वो चाहते थे कि जो दिन स्थापना है वहाँ पर हमें कीर्तन करी, मैं क्या करूँ ये दो जहाँ तो नहीं जा सकते भाई, लेकिन अब आने वाला अब साल में हम सब लोग को बता देते हैं कि राजयू फाहुन कि फाहन जो रेडियो चलते हैं, हम सब आपका रूह का खुर बना लिए हैं और अब हमसे बनाएंगे चौथा ग्रुप टीम फाहन का। तो आने वाला साल में होगा भाई संजय के साथ में, हो सकते शायद कृष्ण मंदिर के साथ में।
0: नहीं, वो बात भी हो गया, आज हुआ सभापति से कृष्ण मंदिर से, मैंने उसके कानों में डाल दिया है।
1: अच्छा।
0: क्योंकि भाई बाबू जो सभापति है वहाँ का, और उन्होंने कह दिया कि ठीक है, हम तो सहमत है और हम वो तो और भी कुछ करना चाहते हैं।
1: ठीक है,
0: पर अभी उसके बारे में बातचीत होगा क्योंकि
1: अभी बहुत फ्रूक।
0: हाँ,
1: तो अब आने वाला साल में, बीते हुए साल में तो हम सूरीनाम देश में थे, यानी इस साल में जब सूरीनाम में थे, तो यही आशा है जब भगवान चाहेगा तंदुरुस्ती ठीक रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा, तो अब की होली हम जोर तोर से मनाएंगे और चौथा ग्रुप भी हम सब सिद्धि करेंगे, आप भी हैं और गंगा भैया है फाहौन चौताल ग्रुप, साथ ही साथ होलका भी जलेंगे और जनता को अल्फाज कान में हमने डाल दिया कि तैयार रखना।
0: हाँ, पर ठंडा होगा ना।
1: ओ यार, बोले जहाँ बसे वहीं सुंदर देशु,
0: और मिर्च और यास पहन ले तो बस
1: सब हो जाएगा।
0: तो कई दो में जलावल जाइए खूब मन तन से। और इसमें थोड़ा से मैं और दार देना चाहता हूँ कि मेर दान फेर तक यार से वो फॉरखनिंग को मांगा जाता है और मिलता है भी सरकार। अभी पिछले साल जो फॉरखनिंग हमने मांग किए तो थोड़ा देर से हो गया था, तो जो फॉरखनिंग देते हैं तो वो कहा कि ये तो हर साल ना मांगता है। कहने के तात्पर्य ये, वो जानते हैं कि ये कार्यक्रम रुकने वाला नहीं है, अभी हम लोग चला रहे, तो अब से अगले साल कुछ ज्यादा तादाद में वहां पर ठंडा में खड़ा होकर के और कुछ व्यवस्था करेंगे कैक दौर में। और ये जो भाई महेंद्र गुदर के रखा हुआ उनकर मामा लोग के, शुरू में तो ये कार्यक्रम होता था मालीफेल्ट पे, तो फिर उसके बाद में दिया गया कैकडोइन, और तभी से 40 साल से ज़्यादा हो गया कैकडोइन का जो कार्यक्रम होता है। तो अगले साल खूब जोर
1: हो सकता है, शायद एक टेंट भी हम सब रख सकते हैं।
0: नहीं, टेंट तो रखना पड़ेगा क्योंकि टेंट का भी व्यवस्था करना पड़ेगा।
1: तो देखो क्या होगा, और सोचते हैं कि अच्छा चलेंगे। और आप भी अब देखो मंदिर में भी बतिया चुका है, और देखो नवंबर से हम सब शुरू करेंगे यानी कि ओपनिंग।
0: पर उस और जरूर वो तो नवंबर से शुरू करेंगे।
1: नहीं, नवंबर से शुरू करेंगे।
0: पर आप ये जवाब नहीं देते जॉनी भाई कि आप रामलीला के क्या करा रहे हैं।
1: वो आपके क्षेत्र पंडित जी।
0: नहीं नहीं, हम लोग तो काम करना चाहता है क्योंकि वो एक ऐसा चीज है जहां पर आप
1: जो
0: उसमें हाथ धर देंगे तो वो हो जाएगा।
1: भाई संजय, रामलीला जो है जरूर चलाना चाहिए, लेकिन काम बहुत बड़ा है, उसमें एक दो आदमी का संयोग से नहीं हो पाएगा। अगर ये बड़ा हम करना चाहते हैं, जैसे सूरीनाम में लोग करते हैं, फेल्थ पे करना चाहते हैं, या कोई बड़ा साल में करना चाहते हैं, बड़का हॉल में, तब ये बात जानो कि पूरा हॉलैंड के लोग आएंगे, ओनाक्षी सिर्फ दनहाक के लोग आएंगे। आप करते हैं आपको तियातर भर जाते हैं, लेकिन जब और बड़ाम करेंगे, दो हफ्ता चलेंगे, शुक्र शनिचर अतवार और हर जस उम्र में करना पड़ेगा। कारण कि जब बाहर आप रामलीला करेंगे, जैसे सूरीनाम में या भारत देश में लोग करते हैं, तो गर्मी चाहिए, फैल चाहिए, कपड़ा चाहिए, डेकोरासी चाहिए, काम बड़ा। ओम दिल अलमाल तहरियाली शेर मुत खुद स्टीफ और खालिशा से पैस्तान, यानी कि आप जानते हैं काम बांटना पड़ेगा, काम नहीं बांटेगा तो काम नहीं होगा। अल अफदीलिंग मुझिए फरदील, कि तुम्हारा क्षेत्र ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा है, तो 10 लोग को आप जब काम बांट देना तो काम हल्का हो जाएगा। एक दो आदमी हो परसों अंदरस मुझे अलमाखन फरदील, तब हो पाएगा भाई। और जो सी आदमी चाहिए, ना कि जैसे 7 बजे स्प्रक करे तो 9 बजे आने यही में न करे, आप तो जानते हैं वो लोग भी होता है। तो ये सब बांध बहुत लंबा है, बड़ा है भाई, इसके बारे में जो अगर करना है तो मिलजुल के हो सकता है, कौन नहीं हो सकता, जब भगवान चाहते हैं, जनता के आशीर्वाद है, लोग चाहते तो हो सकता है, लेकिन इसका और खानिशासी जबर होना चाहिए।
0: जरूर और खानिशासी जबर होना चाहिए, बगैर और खानिशासी कुछ नहीं हो पाता। पर छोटा सा, छोटे मुंह बड़े बात, छोटा सा एक ही व्यक्ति और शुरू किया तो 8,000 लोग को अमार में धल लिया। तो कहने के तात्पर्य यह है, हम लोग का अक्तिफिताई था जो मिलन होता है साल में चैनिंद मोय पेरियोद, और जरूर शायद हम लोग जो नवरात्रि होना चाहिए, रामलीला होना चाहिए दूसरा नवरात्रि से पहले, पर वो ठंडा समय है पब्लिक, क्योंकि देखा जाए कि ब्रसल, बेल्जिया, इंग्लैंड, डच्सलैंड, यहाँ भी हमारे हिंदुत्व है,
1: बहुत
0: एम्बेसी से जुड़े हुए हैं। और अगर जो हम लोगों ने वो मोई प्रोखामा लेकर एम्बेसी के पास जाए तो वो लोग हम लोग के मदद करने के लिए तैयार है,
1: ठीक है।
0: पर एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हनुमान बनकर सब पार करा ले। अब वो मैं हवा पे तो नहीं देख रहा हूँ कोई और के
1: ये बात है, ये भाई संजय बहुत लोग है, आप भी तो है, कितने कितने प्रोग्राम
0: नहीं करके देखो करके। कहने के तौर पर ये हम लोग यहाँ बैठ करके बात कर लेते हैं, पर बात करने से नहीं, ये मुद्दे क्वालिटी तो है भाई, ये जैसे कि अभी आपने कहा रिसफेल वर्क, और चलो 9 दिन के ना सही, हम तो 45 मिनट वाला, और वो ही 45 मिनट वाला हम लोग के चाहिए 5 मिनट में अफरोंद करेंगे, मैंने बोला 5 मिनट में, क्योंकि यहाँ जो कार्यक्रम बनाते हैं गोरे लोग तो वो लोग अपना प्लानिंग बहुत स्ट्रक पकड़ते हैं। हमारा प्रोग्राम जो 45 मिनट के है तो उसे हमें 30 मिनट में प्रेजेंटेयर करना है, प्रभाव भी पड़ना चाहिए ना, प्रभाव हम जल्दी जल्दी आकर के काम करेगा तब प्रभाव नहीं पड़ेगा,
1: आदमी समझ नहीं पाएंगे
0: कुछ, और प्रभाव कुछ होना, प्रभाव तो डालना है, वही तो संदेश है हमारा, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, पर हमें उसका मतलब नहीं वो हमें समय नहीं दे रहा तो हम ना करूं, हमें तो आगे बढ़ना है,
1: सही बात,
0: क्योंकि हम है आज है पता नहीं कब रहेंगे, करना
1: कल तो किसने देखा,
0: कल किसने देखा है
1: भाई जी, नहीं क्वार्ट फोर हो गया है 7 बजने में,
0: क्वार्ट फोर हो गया है 7 बजने,
1: एक घंटा हमने 3 बजे आया, कुछ लोग कुछ सुना दे, कुछ
0: एक गीत चला देते हैं।

मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। दोस्तों सुनने वालों, अभी हम भाई जॉनी जी के साथ कुछ संदेश को रखे और देखा जाए कि रामलीला जो हॉलैंड में होने वाले हैं और अत्यंत सुंदर है जो कि हम लोग कोशिश करने को जा रहे हैं। कोशिश भी ये है कि फाहुन भी अपने ओर से जो रामलीला शायद 9 दिन ना सही पर 2-3 दिन के लिए भी कुछ और लिखा जाए और हम लोग भी प्रस्तुत कर सके। और भी गीतों जो हमारे प्लेयर पे रखे हुए हैं, देखते हैं कौन सा गीत इस बार हमारे कंप्यूटर ने ट्यून करके रखे हैं।

0: सुनो वालों, और यहाँ पर हमारे जो कुलेखा साथी सीतू दत्वा तो चमके है भाई यूसुफ जी, जो अपना कार्यक्रम के लिए ही लोगन भाई तदनी से 8 बजे से आप लोग का कार्यक्रम हम लोग को थोड़ा अवसर छोड़ देवल करो, कुछ सुना दो अपने लॉय सरास के कि अभी क्या लेकर आने वाले हैं आप सब।
1: जैसा सबको के मालूम है कि हर सोमवार के हम लोग 8 बजे से 10 बजे रात तक गीत गजल कर रहे हैं हम भाई गंगा।
0: और सोमवार के हिंदुस्तानी में कैसे बोला जाए?
1: रविवार।
0: दोस्तों सुनने वालों, हम लोग एक दूसरे के देख लेते हैं तो बस इतना मगन हो जाते हैं और इतना खुश हो जाते हैं। अभी कार्यक्रम जो कि अव्बल प्रोग्राम होते हैं ना आप लोग का, अव्बल प्रोग्राम जो, हाँ अव्बल प्रोग्राम होगा। और भाई यूसुफ जी जो आ गया है अभी तैयारी में लगे हुए हैं, माइक्रोफोन लेने वाले हैं।

0: भाई यूसुफ जी, हम लोग अपना कार्यक्रम के और जो हम लोग के खदेलता जो हम लोग कुछ कह रहे थे यहाँ से समाप्ति के सीमा पे आकर पहुँचे हैं, पर आज रात्रि में कोई खास गीत है। हमने देखा एक पर्चा कि आजकल अमिताभ बच्चन का गीत को ज़्यादा चलाया जाता है, ऐसा क्यों?
1: वजह हमने यानी क्या है भाई?
0: पर तेईमा उसे धरा गया,
1: हम लोग आज
0: ओ खून लगातार रहेगा,
1: सब कोई बैल करी 924 हम लोग के है और आदमी लोग बैल करे, हम लोग सबके गाना अंदराई कर देगा
0: ऐसा। तो दोस्तों सुनने वालों, यहाँ तक हमने आपके साथ सहयोग दिए, आशा ये है कि आप सुनते रहना। यूसुफ जी और गंगा जी का कार्यक्रम अभी स्टार्ट होने वाले है। सभी को नमस्कार, जय गोविंद।

फिल्म से निकाला हुआ ये सुंदर सा गीत एक नया फिल्म है जिसमें आहान पांडे जो काम किए हैं और मेरे ख्याल से ये आहान कोई और नहीं है चौंकी पांडे का भांजाल यानी कि उनका नेफ कहा जाता है। दोस्तों मैं हूँ आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और कुछ नए नए गीतों के साथ हम कुछ समय तलक आपके साथ व्यतीत करेंगे। दूसरा गीत जो हमने प्लेयर पर खोज करके रखे हुए हैं एक फिल्म जो 2025 में नई खंती मार्च में जो जिसका प्रीमियर हुआ है उससे पहले कितना पैसा कमा चुका थे और फिल्म जो एक मारतार वाला फिल्म है खूब धुरंधर नाम जिनमें रणवीर कपूर रणवीर सिंह ने काम किया ना रणवीर सिंह ने काम किया है और आदित्य धार जो ये फिल्म को डायरेक्ट किए हैं। तो इसमें भी सुंदर सुंदर गीतों के साथ देखते हैं और प्लेयर पे तो चुन करके मैंने रख चुका है तो चलाते हैं और देखते हैं उसमें क्या और...

एक फिल्म जिससे बॉलीवुड काफ़ी पैसा कमा रहे हैं, और एक फिल्म जो कि कहा जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया के कुछ समस्याएं इसमें रखा गया है। दूसरा भाग जो बनाया गया है वो लगभग 4 घंटे के है, और एक फिल्म जिसे हम लगातार देखते रहते हैं। हमने तो कहा गया कि बियोस्कोप में ऐसा होता है माहौल कि शायद इंटरफॉल भी नहीं रखा जाता है, और कोई उठकर जब वहाँ से बाहर निकलता नहीं है, क्योंकि ये इतना सुंदर रूप में और बनाया गया है कि आप सौ न्यूज़ रखते हैं हम नार्थकैकर। इसी प्रकार से और भी फिल्मों जो बॉलीवुड 2025 और 2026 में रिलीज करने वाले, एक और भी सुंदर सा गीत मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हैं, कोई और नहीं और जिसमें अक्षय खन्ना और जानवी कपूर के

संग कोई और नहीं, बस सिर्फ तुम हो, तुम ही तुम हो। और एक फिल्म जिसमें अक्षय खन्ना, जानवी कपूर ने काम किए, रोमांटिक बॉलीवुड सॉन्ग जो 2025 में आया। अगला गीत हमने प्लेयर पर चुन करके रखे है, सुनने वालों, टाइगर 3, सलमान खान और कतरीना का फिल्म।

प्रभु का नाम, तो सब कहते हैं कि कोई भी काम करो तो लेकर प्रभु का नाम। तो यहाँ तो अपना संगीत में उन्होंने ये रखा कि म्यूजिक स्टार्ट करो तो लेकर प्रभु का नाम, पर कहने के तात्पर्य ये है कि कोई भी

सुनो वालो, ये सुंदर सा गीत निकाला गया एक फिल्म जिसमें शाहिद कपूर ने 2026 में फिल्म रिलीज हुआ और हम सफ़र मेरा। हम अगला गीत जो चुन करके रखे हुए हैं और अगला गीत का बोल ऑल्सो बॉलीवुड तो रोमांटिक सॉन्ग देखते हैं और इसमें क्या संदेश रखते हैं, किस प्रकार से अपना रोमांस को और रखते हैं।

तू ही मेरा आज और तू ही मेरा कल, अ हिंदी इंग्लिश डुएट जो एत शेरान और श्रिया घोषाल अपने आवाज में रखे अति सुंदर रूप से और अपना रोमांस को प्रकट किए। दोस्तों हम अगला गीत जो दिल तेरा नाम रणवीर सिंह जिस फिल्म में काम किया है 2026 में जो रिलीज हुआ धुरंधर उससे एक और गीत रखेंगे।

फिल्म जिसमें काम किए हैं रणवीर सिंह और नया कलाकार सारा जो अपना कला को प्रदर्शन दिए है। दोस्तों मैं एक और सॉन्ग चुनकर रखे हुए है 2026 के नए सॉन्ग से निकाला हुआ तेरा प्यार में। और ये फिल्म में आर्यन खान जो शाहरुख खान का बेटा है उसने काम यानी कि उसके ओर से रखा गया। देखते हैं क्या सुना रहे हैं।

एक फिल्म जिसमें आर्यन खान और राश मीखा ने काम किया है 2026 में, और ये गीत जो रजिस्टर हुआ है और देखा जाए कि कितना सुंदर रूप से ये अपना कला को प्रदर्शन किए है। एक और फिल्म का नाम जो भूत बंगला है अक्षय कुमार का, और ये भी अभी रिलीज नहीं हुआ है, आने वाला है। अक्षय कुमार का भूत बंगला, जो उससे मैं गीत रखने को कोशिश करेंगे।

0: समझ रहे हो, ये जगह सही नहीं है अर्जुन।
1: ये भूत बंगला जो फिल्म बनाया गया है और 2026 में रिलीज होने वाला है, प्रिया दर्शन फिल्म, जो काफ़ी दिनों से प्रिया दर्शन ने फिल्म नहीं बनाए थे और अब अक्षय के साथ, अक्षय कुमार के साथ जो ये फिल्म बनाया गया है, एक भूत बंगला जो एक कॉमेडी फिल्म में कहा गया है। और प्रिया दर्शन के फिल्म में तो कॉमेडी और कुछ उस हर एक फिल्म में उसका देखा जाए कि लोग एक दूसरे के पाछे दौड़ते तो जरूर है। और अभी तो रिलीज नहीं हुआ पर हाल ही में रिलीज होने वाले हैं। और अगला गीत जो हमने चुन करके रखे हुए दोस्तों प्लेयर पे, वो भी एक 2026 का फिल्म जो कि इमरान हाशमी और राशि खन्ना का फिल्म है, रोमांटिक सॉन्ग दिल में तू।

लव स्टोरी 2026 का, जिसमें इमरान हाशमी और राशि खन्ना ने काम किया रोमांटिक सॉन्ग्स में, और जो 2026 से जुड़े हुए एक और गीत जो हमने चुन करके रखे हुए हैं, और आवान जवान वॉर 2 से निकाला गया है, जिसमें काम किए हैं ऋतिक रोशन और कियारा और अतवानी। कियारा अतवानी और ऋतिक रोशन ने इस फिल्म में अपना कला से प्रदर्शन दिए हैं।

ऋतिक रोशन और कियारा आडवाणी का फिल्म जो जिसमें से ये सुंदर सा गीत निकाला गया। दोस्तों यहाँ तक मैं आपके साथ जुड़े रहे, हम न्यूज़ और कमर्शियल की ओर बढ़ रहे हैं।

धैर्य की ताकत। किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं, बस धैर्य रखो। जो जैसा करेगा वक्त आने पर वैसा ही पाएगा। समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं होता।

जीवन में इतना खुश रहो कि दुनिया परेशान हो जाए कि इसे किस बात की खुशी है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

क्या हमने किसी का पेट भरा पाए। क्या हम अपने बुजुर्गों के लिए कुछ कर पाए।

चाहे जा दिए है अपने वतन तेरे लिए। सुन वालो, मैं हूँ संजय और आपके साथ जुड़ गए हैं कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ। और ये प्रश्न रख दिया गया है कि क्या मैंने अपने जीवन जिए है अपने वतन के लिए, क्या किए है, क्या अपने औरों के लिए हमने कुछ किए है कभी। उस अंतर्गत में कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ और यहाँ तक भी कि कुछ संस्थाएं हैं जो अपने वतन के लिए कितना भीड़ भाड़ से काम करते हैं, उन सभी के लिए भी एक सुंदर सा गीत चलाने को कोशिश करूँगा।

जैसे कि हमें इस बात को भी पता है कि पाप शरीर नहीं करता है, विचारे हमारे करते हैं और गंगा विचारों को नहीं शरीर को धोते हैं, तो देखा जाए कि हम अपने समाज, अपने संस्कृति और अपने सभ्यता के लिए क्या किए हैं।

सुनने वालों, जब देखा जाए कि सूरीनाम में कितना, जो हम सूरीनाम में हमारा जन्म हुआ, हम अपने सूरीनाम वतन के लिए और यहाँ रहते हैं हॉलैंड में, हम क्या किए हैं अपने वतन के लिए। संस्था जो मनाया गया सूरीनाम में इस समय पे खूब जोर तोर से काम करते हैं, FELS, एक संस्था जो अपने समाज के लिए जोर तोर से काम करते हैं, उसका मोटो यही है कि अंस्टर्क सामलेफिंग दोर खुद लीडरशिप, अंस्टर्क सामलेफिंग दोर खुद लीडरशिप, ये भी बहुत जरूरत है। और फेयरलेस के लिए जो इतना जोर तोर से काम करते हैं, उस अंतर्गत हम एक सुंदर सा गीत प्लेयर पे चुन करके रखे हैं।

चांद तारों सा देश है मेरा, इसका कहानी कहाँ मिट सकता है। दोस्तों, तो देखा जाए कि हमारे रेडियो का जो डायरेक्टर है कुमार घिराव जी भी संस्था से जुड़े हुए हैं और अपने हाथ से मेहनत करवाते हैं FELS फोलक्स पार्टी लेफ बार सूरीनाम, एक संस्था जो न सिर्फ हमारे पुरखों के लिए पर जिनके जरूरत है और उनके लिए समाज सेवा के अंतर्गत जो FELS बनाया गया है उनमें खूब सहयोग देते हैं हमारे सभापति फाउन का डायरेक्टर श्रीमान कुमार घिराव जी, जो न सिर्फ हॉलैंड में पर सूरीनाम और इसी प्रकार से इंडिया में अपनी ओर से सहयोग देते हैं।

जिनका नाम कहा गया है कि नमामि गंगा। नमामि गंगा एक संस्था जो बनाया गया है, जिसे ये काम सौंपा गया है कि हम अपने पानी यानी कि जल में, कहीं कंडाल में तो कहीं जिसे कहते हैं गोत्रो और या नदी और समुद्र में, कहीं भी कोई प्रकार से ऐसा सामान ना छोड़े जो प्रकृति के लिए हानिकारक है। नमामि गंगा जो ऑपरेट हुआ है 2024 में,

0: कभी कभी हम लोग भी ऐसा काम करते हैं जो शायद हम सोचते कि हम भगवान का नाम लिए, पूजा प्रार्थना आराधना किया और सामान कुछ उसमें फोली डाल करके और प्लास्टिक डाल करके जा करके उसे सिरवा दिया जाता है। तो दोस्तों सुनने वालों, इस बात पे ध्यान देना कि हमारे संस्थाएं जो बनाया जाता है और उसे उसका संदेश क्या है, उसमें हमारे प्रकृति के लिए क्या परिवर्तन होने वाला है, उस पे जरूर ध्यान दे, क्योंकि ये लक्ष्य रखे कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। और हम सब जब उस पे भी ध्यान देंगे कि कोई प्रकार से प्लास्टिक आदि जल में ना छोड़े जो जा करके ना फटेर हुए, जैसे कि प्लास्टिक फोली मेटल प्रोडक्टन मेटल का बनाया हुआ, और ये सब चीज़ें जल में ना छोड़े, कोई कोई कपड़ा आदि भी ले जा करके छोड़ते हैं। तो नमामि गंगा का यही लक्ष्य है कि हम अपने जो जल है और जा करके उसमें जो हम लोग कभी काल के छोड़ते आए हैं उस पे अब से परिवर्तन आ जाए। हम एक सुंदर सा गीत चुन करके रखे हैं।
1: सिरनम के गोद में

रॉबी उदित राम के आवाज में हम सब सुने सूरीनाम के हमारे कलाकार, और कहते हैं कि दुनिया के सबसे बेहतरीन दवाओं में से एक है जिम्मेदारी। ये जिम्मेदारी हम सब जब समझ जाए ना, जो भी इस दवा को एक बार ले लेता है फिर उसे कभी थकान नहीं होता है। तो ये जिम्मेदारी, हम इस पे थोड़ा से गौर करें कि हम क्या अपने जीना जी रहे हैं, क्या कोई जिम्मेदारी हम अपना निभाए या नहीं निभाए। देखा जाए कि सूरीनाम में भी एक मारियम बेरख में ना, बयार्दन तहस सिम्बह ऑपरिख 25 नवंबर 2000 न्यू वोन सेंट्रम त मारियम बेरख। देखा जाए कि कितने लोग हैं जो ऐसे सोच रखते हैं कि हम अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, और ये सुंदर सा जो स्थान को और जो बना करके और रखा गया, जो त्वेदायसन से बन के और तैयार हो करके आज वहाँ देखो कितने पुरखों और वहाँ जो उनके लिए व्यवस्था बनाया गया है। बयार्दन तहस सिम्बह के लिए एक सुंदर सा गीत अपने प्लेयर पे चुन करके रखा हूँ।

वक्त ही तो है दोस्तों, यही वक्त है, रुक थोड़ी ही जाएगी। तो हम सब अपने वतन के लिए क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं, या कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे।

कहते अपने शब्दों पे ध्यान देना ना। अगर शब्दों के रेंज अच्छे हो तो लोगों का नेटवर्क कभी नहीं टूटता है।

दोस्तों इसी तरह से बनाया गया है भी संस्था विश्व हिंदू परिषद, संस्था विष्णु हिंदू परिषद, जिनका यही लक्ष्य कि हमारे हिंदुत्व के लिए कुछ कर सके। वर्ल्ड हिंदू काउंसिल जिसे हम जानते हैं, फेहापे जिसे हम अफकोर्टिंग से जानते हैं कि विश्व हिंदू परिषद,

फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। दोस्तों, इसी प्रकार से 2021 में बनाया गया संस्था श्री परमेश्वर ज्ञान यज्ञ, उसका लक्ष्य यह था कि समय महामारी का चल रहा है और क्यों ना हम एक ऐसा कार्य करें कि हमारे समाज को रक्षा हो सके। तो संस्था श्री परमेश्वर ज्ञान यज्ञ, जिनका सभापति देव जी जॉनी और मनोज जी के साथ मिलकर के एक ऐसा और कार्य को रचे थे और जो 7 दिवस के लिए यज्ञ को और करवाए थे, वो संस्था श्री परमेश्वर ज्ञान यज्ञ के लिए एक सुंदर सा गीत हमने चुन करके और रखे हैं

कहते हैं कि वर्तमान से सुख लेने का प्रयास कीजिए, वर्तमान से सुख लेने का प्रयास कीजिए, भविष्य बहुत कपटी होता है। भविष्य कहते हैं तुकम्स को और वो बड़ा कपटी हो सकते हैं। वो केवल आश्वासन देता है, गारंटी नहीं। तो सोचिए कि मैं अपने वतन के लिए, मैं अपने समाज के लिए, मैं अपने औरों के लिए क्या कर सकता हूं। ये वक्त ये है जो रुकता नहीं।

कह सकते हैं कि कल बुरा था, कल बुरा था, आज अच्छा आएगा, पर वक्त ही तो है, रुक थोड़ा ही नहीं जाएगा। तो दोस्तों सुनने वालों, इसी प्रकार से इस पे थोड़ा से ध्यान देना कि हम क्या कर सकते हैं। हम अगला गीत की ओर बढ़ने वाले हैं।

मोहम्मद शरीफ जी के आवाज में ये सुंदर सा गीत कि ऐ सुन लो मोर कहानियां, हम आए सुरिनाम, कुछ चीज जो यादें बन करके रह जाते हैं ना दोस्तों।

क्या कहे यादे के अंतर्गत, ये यादे भी ना। जिनका यादे अच्छे होता है जो ऐसा काम किए हैं, क्योंकि यादें ही तो जिंदगी का खजाना कहलाते हैं। यादें ही जिंदगी का खजाना है, बाकी तो सबको खाली हाथ ही जाना है। कोई कुछ आज तक लेकर गया ही नहीं,

हमारी अपना ही देश के कलाकारों में से एक कलाकार मिशेल एंथ, उसके आवाज़ में ये सुंदर सा गीत को हम सुनेंगे।

कोई आए न या ना आए, मैं तो आऊंगा, सूरीनामी के झंडा लहराऊंगा। मिशेल अंत जी के आवाज में उन्होंने भी कुछ यादें छोड़ गए और कितना सुंदर रूप से क्या संदेश रखे। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम थोड़ा से दृष्टि डाले कुछ संस्थाएं हैं, ऐसे और भी संस्था है जो हमारे समाज के लिए, हमारे सभ्यता के लिए, हमारे संस्कृति के लिए, जो दूसरों के जीवन में उजाला करता है, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं रहता है। यही संदेश लेकर के जो हमारे संस्थाएं जैसे कि FELS Volksparty Leefbaar Suriname जो जोर तोर से काम करते हैं, और बयार्दन तहै सिम्हा वोन सेंट्र मारियम बेरख में संस्था श्री परमेश्वर ज्ञान यज्ञ जो अपनी ओर से अपने समाज के लिए क्या किए हैं, विद्वत हिंदू परिषद जिसे हम जानते हैं वर्ल्ड हिंदू काउंसिल से, सभी अपने अपने ओर से अपना और सहयोग देते हैं और कुछ ना कुछ करते हैं हमारे समाज और संस्कृति के लिए। तो दोस्तों, आज यहाँ तक जो संदेश रखा गया कुछ संस्थाएं के अंतर्गत जो मन तन और धन से अपना सहयोग देते हैं समाज सेवा में, हम यही आशा रखता हूँ कि इसे सुनकर के और आप इस पे थोड़ा से ध्यान दें कि हम कुछ यादें छोड़ के जाए, बाकी हम सब आप पर छोड़ देते हैं।

प्यारे प्यारे प्रभु भक्त आत्माओं, जैसे मैंने श्री रामायण के हर एक कांड में बतलाया कि ये राम कथा हमें प्रेम, त्याग और कर्तव्य का बोध कराती है, इसीलिए बार बार हमें श्री रामायण जी का श्रवण करना चाहिए। तो आइए शुभारंभ करते हैं श्री रामायण जी का।

मोर के कंठ की आभा के समान, नील वर्ण पीतंबर धारी, हाथ में धनुष धारण करने वाले वानर समूह से युक्त, देवताओं से सेवित, स्तुति किए जाने योग्य जानकी जी के प्राण आधार रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के अवध में आने का एक दिन बाकी रह गया, परंतु अयोध्या वासियों के लिए ये एक दिवस युग के समान हो गया है। श्री रामचंद्र जी की प्रतीक्षा में कौशल्या, केकई, सुमित्रा, भरत, शत्रुघ्न एवं समस्त अयोध्या वासी सोच ही रहे थे कि श्री हनुमान जी ब्राह्मण वेश में आकर भरत जी को प्रभु राम के आगमन की सूचना देते हैं।

अयोध्या नगरी में विमान उतरने के उपरांत प्रभु श्री राम ने पुष्पक विमान को वापस कुबेर के पास जाने की आज्ञा दी। प्रभु ने सुग्रीव, अंगद, विभीषण आदि से अपनी पावन जन्मभूमि अयोध्या एवं पवित्र सरयू नदी की विशेषताएं समझाई। उधर जब अवध के निवासियों ने विमान से श्री रामचंद्र जी को उतरते देखा तो अपना आपा भूलकर श्री रघुराय की ओर दौड़ पड़े। श्री रामचंद्र एवं लक्ष्मण तथा सीता जी ने गुरु तथा माताओं के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद दिया। भरत जी श्री रघुराय राम के चरणों से ऐसे लिपट गए जैसे सुंदर से वृक्ष पर अमर बेल लिपट जाती है।

भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रिय भक्तजनों, फिर शुभ मुहूर्त विचार कर कुल गुरु वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक का आदेश दिया। मंत्री सुमंत जी को बुलाकर सभी जगह निमंत्रण भेजने को कहा। अयोध्या नगर को दुल्हन की भांति सजाया गया। अभिषेक हेतु सातों समुद्रों एवं समस्त तीर्थों से जल मंगाया गया। माता कौशल्या, केकई, सुमित्रा फूली नहीं समा रही। भरत जी ऐसे प्रफुल्लित हैं मानो विष पान के बाद किसी को प्राण दान मिल गया हो। राज्य अभिषेक की सभी तैयारियां पूर्ण हो गई हैं।

ब्रह्मा शिव एवं इंद्र आदि देवगण श्री रामचंद्र जी की स्तुति करने लगे। हे हरि, हे दीनानाथ, आपकी माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, चराचर, जीव कर्म और गुणों से भरे हुए भी आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे प्रभु, जिन पर आपकी कृपा दृष्टि होती है वे तीनों प्रकार के दुखों से छूट जाती हैं, परंतु जिन्होंने अभिमान में आपकी भक्ति का आदर नहीं किया वे ऊंचे पद पर रहकर भी अपने वास्तविक पद से नीचे गिर जाते हैं। जो श्री चरण श्री लक्ष्मी जी द्वारा सेवित हैं, हम उन चरणों में

प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रिय भक्तजनों, जानकी वल्लभ मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक हो चुका है। चारों ओर श्री रामचंद्र जी की जय के शब्द गूंज उठे। प्रकृति मानो नृत्य करने लगे। देवगण आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। विप्र वृंद वेद मंत्रों का गान कर रहे हैं। जहां तहां शंख और घंटों की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। फिर सायकाल में जब उत्सव समाप्त हुआ, तब श्री राम प्रभु ने विभीषण अंगद एवं समस्त वानर दल के ठहरने की उचित व्यवस्था करवाई।

भक्तजनों, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अंगद को प्रेम पूर्वक समझाकर उनके राज्य को भेज दिया एवं नीति धर्म मर्यादा का पालन करते हुए राज्य का संचालन करने लगे। उनकी देखरेख में अयोध्या राज के समस्त निवासी सुख पूर्वक रहने लगे। उनके राज्य में कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था थी। छोटे बड़े, धनवान निर्धन का कोई भेदभाव नहीं था। कहीं चोरी ठगी झूठ कपट का व्यवहार नहीं था। कभी कभी तो अयोध्या की खुशियों से देवगण भी ईर्ष्या करने लगते थे।

एक दिवस सुंदर अवसर जानकर श्री हनुमान जी ने करुणा निधान श्री रामचंद्र जी से कहा, हे प्रभु, श्री भरत जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। श्री राम की अनुमति पाकर श्री भरत जी बोले, हे प्रभु, आपने वेद एवं पुराणों की बड़ाई की है। मैं संतों और असंतों के लक्षण जानना चाहता हूँ। तब श्री रामचंद्र जी बोले कि हे भरत, संत और असंतों की करनी ऐसी होती है जैसे चंदन और कुल्हाड़ी का आचरण। संत विषयों में लिप्त नहीं होते, कटु वचन नहीं बोलते तथा नियम और नीति से विचलित नहीं होते।

प्रिय भक्तों, इसी प्रकार एक दिवस राजसभा में गुरु ब्राह्मण मंत्री आदि बैठे हुए थे। तब प्रभु श्री राम बोले, मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, अच्छी लगे तो अनुसरण करना। यह मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला है, इसे विषय भोगों में मत खोना। जो इस अवसर को खो देता है वह फिर 84 लाख योनियों के चक्कर लगाता रहता है। जो मानव चोला पाकर मुक्ति का साधन नहीं करता वह आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। जगत में एक ही पुण्य है, मन कर्म वचन से सिद्ध संतों के चरणों की सेवा करना।

सज्जनों, तब शिव जी बोले, उमा सुनो, जब दक्ष ने तुम्हारा अपमान कर दिया और तुमने प्राण त्याग दिया, तो मैं निराश सुमेर पर्वत के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसी वृक्ष पर काक मुशुंडी रहकर श्री हरि का गुणगान करता था। मैं हंस का शरीर धारण कर उसके पास गया, तभी गरुड़ जी भी वहां आ गए। गरुड़ जी ने काक मुशुंडी जी से कहा कि हे काक मुशुंडी जी, मुझे भी अपार सुख देने वाली पवित्र कथा सुनाओ। तब काक मुशुंडी जी ने गरुड़ को श्री

प्रिय भक्तात्माओं, कागभूषुंड जी कहते हैं कि कलयुग में किसी भी जन्म में जो अवध में बस जाता है वो श्री राम जी के परायण हो जाएगा। परंतु काल का ऐसा प्रभाव था कि सभी लोग मोह के वश में हो जाते हैं। इस युग में पंडित वेदों को बेचने वाले, राजा प्रजा को ही खाने वाले होते हैं। कलयुग में पंडित वही होता है जो आडंबर रचता है, शुद्ध ब्राह्मणों को उपदेश देते हैं, स्त्रियां पर पुरुष का साथ करती है और पुरुष पर स्त्री का साथ करते हैं। सिद्ध ब्राह्मण तथा सिद्ध गुरु की हत्या होती है, अनेकों शिष्य पापी होते हैं। अर्थात कलयुग में चहु

प्रिय भक्तों, काकभुशुंडी जी बोले, हे पक्षीराज, उस कली काल में मैं अयोध्या में रहा, परंतु अकाल पड़ने पर मैं कहीं और चला गया और शिव की पूजा करने लगा। वहां एक दिन मैं पूजा कर रहा था और मेरे गुरु जी आ गए। मैंने उनको देखकर भी प्रणाम नहीं किया, अर्थात मुझ जैसे मूढ़मति अज्ञानी ने गुरु का अपमान किया। उसे गुरु तो सहन कर गए, परंतु देवाधिदेव शंकर भगवान ने क्रोध करके सर्प बनकर पेड़ की खोखर में जाकर रहने का श्राप दिया। हे पक्षीराज, मेरे जैसे मूढ़ अज्ञानी के लिए यही दंड उचित था।

हे गुरुजी, जब लोमस ऋषि से मैंने ब्रह्म के विषय में पूछा तो उन्होंने मेरी चतुरता एवं अधीरता पर क्रोध करके मुझे फिर से कौवा बनने का श्राप दिया। मैं कौवा बनकर उड़ चला। मुझे अपना ये काक शरीर इसलिए पसंद है कि मैंने इसी रूप में प्रभु श्री राम के दर्शन पाए थे और सब लीलाएं देखी थी। फिर गरुड़ जी ने काक भुशुंडी से पूछा कि ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है। सज्जनों, तब काक भुशुंडी जी ने बड़े प्रेम से गरुड़ जी को ज्ञान और भक्ति का भेद समझाया।

भक्त वत्सल सच्चिदानंद स्वरूप परम पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के अतिशय प्रिय भक्तों, काक मुसुंद जी ने गरुड़ जी को भक्ति ज्ञान वैराग्य के अनेक भेद बतलाए। उन्होंने मानव शरीर को सर्वोत्तम बतलाया, क्योंकि मानव को प्रभु ने बुद्धि विवेक चेतनता प्रदान किए हैं। स्वतंत्र रूप से कर्म करने योग्य केवल मनुष्य शरीर है, परंतु यदि कोई मनुष्य तन पाकर भी पशुओं की भांति आचरण करता है तो इसमें प्रभु का अथवा अन्य किसी का क्या दोष। अतः मनुष्य को मोह माया से ध्यान हटाकर श्री राम प्रभु के चरणों में ध्यान एकाग्र करना चाहिए।

0: प्रभु प्रेमियों, इस उत्तरकांड की विशेषता यही है और इससे यह शिक्षा मिलती है कि प्रभु की परम कृपा से यह मानव शरीर मिला है। इसको यूं ही अहंकार और भौतिक सुखों में व्यतीत कर दिया जाए तो फिर हमारा चारों तरफ से पतन ही पतन, मतलब हानि ही हानि है। भगवान शंकर हमें ये खुद समझा रहे हैं कि मानव शरीर पाकर जो दुराचारी बना उसकी गिनती अधम में यानी पापियों में होती है। प्रभु का ध्यान, प्रभु की भक्ति मानव के लिए सुरक्षा कवच है। प्यारे प्यारे प्रभु भक्त आत्माओं, मैं आपका गोपाल परदेसी बाबा, जिसने आपको श्री रामायण के सातों कांडों का हृदय से भाव विभोर होकर सरल रूप और भाव पूर्ण तर्ज में श्रवण कराया, इस श्री रामायण को इस सरल रूप में आपके सामने रखने की मेरी यही अभिलाषा है कि आज के समय के युवा वर्ग भी इससे प्रेरित हो और अपने जीवन को मंगलमय व आनंदित बनाए। इस श्री रामायण गाथा को पूरा करने में मेरी अर्धांगनी राधा जी का विशेष योगदान रहा है, क्योंकि उन्हीं के प्रेरणा से ये सब संभव हो पाया है। सज्जनों, अगर इस गाथा को श्रवण कराने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं आप सभी भक्तों से क्षमा चाहता हूँ। मैं आपका सेवक, भजनिक और उपदेशक गोपाल परदेसी बाबा फ्रॉम नीदरलैंड। जय श्री राम।
1: ऐ प्राणी, संसार में सुख दुख, भाव अभाव, होना ना होना, लाभ हानि और जीवन मरण, ये सब सभी प्राणियों को बारी बारी से प्राप्त होते हैं। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि मैं तुम्हारी सुबह शाम की पूजा तभी स्वीकार करता हूँ जब तुम्हारे दिन के काम काज में एक भी झूठ नहीं होता।

संसार की तरफ चलने वाले का कोई भी साथी नहीं होता, पर भगवान की तरफ चलने वाले के सब साथी हो जाते हैं।

संसार के सभी संबंध अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए ही है, न कि अधिकार जमाने के लिए, सुख देने के लिए है, न कि सुख

मेरे प्यारे प्यारे प्रभु प्रेमियों, ये राम कथा हमें प्रेम, त्याग और कर्तव्य का बोध कराती है। इसीलिए बार बार हमें श्री रामायण जी का श्रवण करना चाहिए। तो चले हम शुभारंभ करते हैं रामायण का पंचम कांड यानी सुंदर कांड।

मर्यादा पुरुषोत्तम भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रिय भक्तों, अंगद जामवंत आदि को धीर बंधाकर और प्रतीक्षा करने के लिए कहकर केसरी नंदन श्री हनुमान जी सबको मस्तक झुकाकर हृदय में श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का ध्यान करके हर्षित होकर चले। सागर के तट पर एक सुंदर एवं विशाल पर्वत था। श्री हनुमान जी खेल ही खेल में उस पर्वत की चोटी पर चढ़ गए और बारंबार रघुवीर जी का सुमिरन करते हुए बलवानों के बलवान, ज्ञानियों के ज्ञानी, भक्त शिरोमणि मात अंजनी के लाडले अत्यंत वेग से उछले। बोलिए श्री राम भक्त बजरंग बल...

जब सर्पों की माता सुरसा को महावीर हनुमान जी ने कहा कि हे माता, मैं श्री रामचंद्र जी के कार्य हेतु जा रहा हूँ, जब मैं प्रभु का कार्य पूर्ण करके वापस आऊं तब आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कर लेना। परंतु सुरसा ने हनुमान जी की बात नहीं मानी और अपना मुंह योजन भर फैला लिया, तो हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा लिया। तब जैसे जैसे सुरसा मुंह फैलाती गई, हनुमान जी भी अपना शरीर बढ़ाते गए। अंत में जब सुरसा का मुंह 100 योजन फैल गया, तब श्री हनुमान अपना शरीर अति सूक्ष्म करके सुरसा के मुंह में घुसकर तुरंत बाहर निकल गए।

चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की पहचान बताई थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब राक्षसों का अंत निकट जाने। हे कपीश्वर, आज मैं धन्य हो गई जो श्री राम जी के दूत के रूप में आपको इन नेत्रों से देख रही हूं। हे वानर राज, अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके नगर में प्रवेश करके उनका कार्य पूर्ण

फिर विभीषण जी ने हाथ जोड़कर विप्र रूप धारे श्री हनुमान जी से पूछा, हे विप्र, आप कौन हैं? आप या तो प्रभु श्री राम जी के भक्तों में से कोई हैं, अथवा स्वयं श्री राम जी हैं। आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है, कृपया अपना परिचय देने की कृपा कीजिए भक्तों। तब श्री हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा समझाकर अपना नाम बताया। तब विभीषण जी भाव विवल हो उठे और बोले कि हे पवन पुत्र, मैं यहाँ लंका में इस प्रकार रह रहा हूँ जैसे 32 दांतों के बीच जिभ्या रहती है। हे हनुमान जी, मेरा तामसी शरीर होने से भजन तो होता नहीं, फिर प्रभु श्री राम जी क्या मुझे अनाथ जानकर कभी कृपा कर

सज्जनों, फिर हनुमान जी सूक्ष्म रूप बनाकर वृक्ष के ऊपर पत्तों में छिपकर बैठ गए। उसी समय मंदोदरी सहित लंकाधिपति रावण अशोक वाटिका में आता है और काल के वशीभूत होकर सीता से अपनी पटरानी बनने के लिए कहता है, अनेक प्रकार के प्रलोभन देता। जब माता जानकी उसे प्रभु श्री राम जी के बल की महिमा बताती है तो वह क्रोधित होकर अपनी खड़ग उठाकर जानकी जी को मारने के लिए दौड़ता है। तब मंदोदरी उसे समझाती है तो रावण सीता जी को एक महीने का समय देकर वहां से चला जाता है। तब रावण के जाने के बाद सीता जी त्रिजटा नाम की राक्षसी से

प्रभु भक्त आत्माओं, अंगूठी को पहचान कर सीता जी ने हृदय से लगा लिया, परंतु मन में हर्ष और विषाद के तूफान चलने लगे। प्रभु श्री राम जी की निशानी मिलने से सीता जी के मन में खुशी की लहर दौड़ गई, परंतु फिर सोचा कि ये अंगूठी यहां किस तरह पहुंची। सीता जी विचार करने लगी कि रामचंद्र जी तो अजय हैं और माया से ऐसी अंगूठी नहीं बनाई जा सकती, फिर यह मुद्रिका यहां कैसे आई। फिर सीता जी बोली, हे भाई, जो इस मुद्रिका को यहां लेकर आया है वो सामने प्रकट क्यों नहीं होता। तो भक्तों, उसी समय श्री हनुमान जी वृक्ष से उतर कर सीता जी के सन्मुख प्रकट हुए।

मित्रों, वानर स्वभाव से तो चंचल होता ही है। चहुं वो सुगंधित फल देखकर हनुमान जी को भूख लगने लगी तो हनुमान जी माता सीता से आज्ञा लेकर फल खाने लगे। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर उछलने कूदने लगे, वृक्षों को तोड़ने लगे। जब वाटिका के रखवाले उन्हें रोकने लगे तो वीर बजरंगी ने उन्हें खूब मारा, खूब मारा। कुछ राक्षस जान बचाकर भागे और रावण की सभा में जाकर वहां का सब हाल बतलाया। तो रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। हनुमान जी ने अक्षय कुमार को एक ही मुट्ठी के प्रहार से मार डाला। तब राक्षस राज रावण ने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ को अशोक वाटिका में भेजा।

तब श्री हनुमान जी बोले, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना करती है, जो सूर नर एवं धर्म की रक्षा की हेतु नाना प्रकार की देह धारण करते हैं, जिन्होंने खरदूषण त्रिशरा और बाली जैसों का वध कर डाला, और जिनकी पत्नी को तुम छल से हरण कर लाए हो, मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का छोटा सा दूत हूँ। हे रावण, मुझे भूख लगी थी इसीलिए मैंने फल खाए, परंतु देह तो सबको प्रिय है। जब तुम्हारे राक्षस मुझे मारने लगे तो मैंने भी उन्हें मारा। हे रावण, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि माता जानकी को प्रभु श्री राम को सौंप कर प्रभु से वैर त्याग दो और उन्हीं का सुमिरन करो।

फिर भक्तों, रावण ने विभीषण की सलाह मानकर अपने राक्षसों से कहा कि हे वीरो, बंदर की ममता अपनी पूंछ पर होती है, इसीलिए इसकी पूंछ में आग लगा दो। इतना सुनकर हनुमान जी मुस्कुराने लगे और अपना शरीर अत्यंत विशाल कर लिया। जब राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी तो हनुमान जी अति लघु रूप बनाकर एक भवन से दूसरे भवन पर कूद कूद कर समस्त लंका में आग लगाने लगे और इस प्रकार विभीषण के घर को छोड़कर बाकी सारी लंका को जला डाला और फिर समुद्र में कूद कर पूंछ की आग बुझाई और अशोक वाटिका में माता सीता के सन्मुख आकर हाथ जोड़कर बोले कि हे माता, मुझे कोई ऐसी निशानी दीजिए जिसे मैं प्रभु श्री राम को दिखा सकूं।

प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रिय भक्तगणों, प्रभु श्री राम जी ने सीता जी की विरह व्यथा हनुमान जी के मुख से जैसे ही सुनी तो उन्होंने सुग्रीव को कहा कि हे वीर सुग्रीव जी, अब अति शीघ्र लंका पर चढ़ाई की तैयारी करो और यहां से लंका की ओर प्रस्थान करो। इस प्रकार प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और समस्त वानर दल ने किष्किंधा से चलकर समुद्र के किनारे डेरा डाल दिया। उधर लंका में जैसे ही रावण को श्री राम और उनकी वानर सेना के आगमन का समाचार मिला तो उसने अपने सचिवों से विचार विमर्श आरंभ किया। उसी समय रावण का अनुज विभीषण भी राज्यसभा में आ पहुंचा और रावण को यूं समझाने लगा।

जाको विधि दारुण दुख देई ताकि मति पहले हर ले। इसी प्रकार रावण की भी मति मारी गई है, आज उसे नीति और ज्ञान की बातें नहीं सुहाती। जब विभीषण ने उसे नीति समझाकर कहा कि सीता को वापस करके श्री राम का भजन करो, तो उसने क्रोधित होकर विभीषण को लात मारकर अपमानित करके सभा से बाहर कर दिया और विभीषण रामादल की ओर चल पड़े। जो ही विभीषण वहां से चले तो रावण समेत सभी राक्षस एवं लंका नगरी आयुहीन एवं ऐश्वर्यहीन हो गई। विभीषण आकाश मार्ग से समुद्र पार करके प्रभु श्री राम जी की शरण में पहुंच गया। दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर विभीषण जी बोले,

आत्माओं, जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी ने विभीषण से समुद्र पार करने का उपाय पूछा तो विभीषण जी बोले, हे प्रभु, वैसे तो आपके एक बाण से ही करोड़ों सिंधु सूख सकते हैं, परंतु प्रथम उपाय विनय ही है। समुद्र आपके कुल गुरु हैं, अतः इनसे विनती करके रास्ता मांगो। तब श्री राम जी समुद्र तट पर कोश का आसन बिछाकर हाथ जोड़कर नेत्र बंद करके समुद्र से प्रार्थना करने लगे। परंतु जब 3 दिवस बीत गए और कोई हल नहीं निकला, तब श्री रामचंद्र जी को क्रोध भर उठा और श्री रघुवीर जी बोले, हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं एक ही बाण से समुद्र को सोख दूंगा।

मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की अतिशय प्रिय भक्तों, प्रभु राम की लीलाएं भी अत्यंत चमत्कारी है। जिस भेद को प्रभु जानते थे वो समुद्र से पूछ रहे हैं। प्रभु श्री राम ने हर स्थान पर मर्यादा का पालन किया है, कहीं भी मर्यादा भंग नहीं की, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। और प्रभु का वरप्पन देखिए कि नल और नील को श्री भगवान ने कैसी बढ़ाई दी। करुणा के सागर ने किसी को भी अपनी दया से वंचित नहीं रखा। ऐसे दयालु कृपालु सुखदायक मैं दिन रात भजता रहूं। जय श्री राम।

अरे प्रभु प्रेमियों, प्रभु राम के कृपा से मैंने आपको श्री सुंदर कांड का श्रवण कराया और आपसे यही आशा है कि इस सुंदर कांड के ज्ञान को लेकर आप अपने जीवन को सुंदर और सार्थक बनाएं। जय

वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनं कुरु मे देवा सर्वकार्यषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् पारब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।

माता पिता चरणं नमः विद्या प्रदायकं दीक्षं मंत्रं गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम।

सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए आज सुबह के कार्यक्रम में मैं आपके साथ जुड़ गए हैं। सभी जो बीमार है, लाचार है, भगवान से यही विनती प्रार्थना किया जाता है कि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आए। सभी जिनका आज सालगिरह है उन्हें बहुत बहुत सा बधाई दिया जाता है और आपके एक शुभ दिवस प्रस्तुत है। जिसका घर पे आज कार्य है भगवान से यही विनती प्रार्थना किया जाता है कि आपके कार्य शुभ शुभ और मंगलमय हो। जो अपने काम के तैयारी में है, अभी निकलने वाले हैं, तो ये मत भूलना गांधी जी का संदेश कि मेरा जो देश हमारे लिए क्या कर सकता है इस पे चिंता मत करना। चिंता ये करना कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ। जो अभी स्कूल के लिए यानी कि अपने पढ़ाई की ओर बढ़ेंगे तो उनको ये कहूँगा कि सरस्वती माता को भूलना मत। क्योंकि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। माँ सरस्वती जो बुद्धि और ज्ञान का देने वाले हैं, जो हमारे देश में सफर से आए हैं, तो यही कहूंगा कि आपको हार्दिक से स्वागत है हमारे सुंदर सा देश में। और जो सफर पे जाने वाले हैं यानी कि कहीं और जाने वाले हैं, तो उनको फैन फकांसी तू एंस किया जाता है। जिनके परिवार में एक नया शिशु ने जन्म लिया है यानी कि एक नया परिवार आया है, उनको बहुत बहुत सा बधाई देना चाहता हूं।

मैं हूं आपका सेवक संजय और आपके साथ जुड़ गए हैं। और खास करके पहला भाग में शंकर महादेवा जी की आवाज में आप सुनेंगे सुंदर सुंदर भजनों। एक दंताए वक्र तुंडाए, ये गीत से हम शुरू करते हैं।

शंकर महादेवा जी के आवाज़ में हम सब ये सुंदर सा गीत सुना। सुनने वालों, एक ऐसा कलाकार जो 7000 से ज़्यादा गीतों को गा चुके हैं, अलग अलग भाषाएं में, तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी। इसी प्रकार से एक व्यक्ति जो अपने जीवन में शायद इंजीनियरिंग के लिए पढ़ा था, पर जाकर के कलाकार बने और इतना सुंदर सुंदर गीतों को गाए। कहते हैं

कहते हैं कि संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बातें कभी ना कभी काम आई जाते हैं। आज अपना एक दिन बनाइए जहां आप शायद संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बातें जो कभी ना कभी आप सुने होंगे शायद आज काम में आई जाए।

सुनो लो, हम शंकर महादेवा जी का जो शिव तांडव स्तोत्रम है उनके आवाज में सुनेंगे।

शिव तांडव स्तोत्रम जो रावण रची, शिव तांडव स्तोत्रम जो जाकर के शंकर महादेवा जी की आवाज में हम सब सुने सुने वाले। कहते हैं कि अजीब से रिश्ता है मेरा ऊपर वाले से, कहते हैं कि अजीब रिश्ता है मेरा ऊपर वाले के साथ, जब भी मुसीबत आती है ना जाने किस रूप में आता है, हाथ पकड़कर पार लगा देता है। मैं उसके सामने सिर झुकाता हूँ, वो सबके सामने मेरा सिर उठा देता है।

सुनने वालों, आपको एक शुभ दिन प्रस्तुत है। और कहते हैं कि मेरे साथ वो खड़ा है मेरा साथ वो खड़ा है जो जगत में सबसे बड़ा है।

कहते हैं जीवन बहुत छोटा है, जीवन बहुत छोटा है, इसे गुस्सा, पछतावा, शिकायत और चिंता करने में बर्बाद ना करे। हमेशा प्रसन्न और सकारात्मा रहे। जरूर इन बातों पे ध्यान देना सुनने वालों कि जीवन बहुत छोटा है, गुस्सा, पछतावा और शिकायत कहते हैं कि चिंता करने में बर्बाद ना करे। हमेशा प्रसन्न और सकारात्मक रहे। सुनने वालों हम अगला भजन की ओर बढ़ेंगे और शंकर महादेवा जी कृष्ण महामंत्र के और संदेश हम सबको सुनाने वाले हैं।

जी रहे हैं सरकार तेरे मेहरबानियाँ में, जी रहे सरकार तेरे मेहरबानियाँ में, पल रहे परिवार कान्हा तेरे पहरीदारी में।

कहते हैं कि यूं ही बनाए रखना कृपा मेरे जिंदगी में, यूं ही बनाए रखना कृपा मेरे जिंदगी में, यूं ही बनाए रखना कृपा मेरे जिंदगी में, लिख लेना मेरा नाम तेरी खातिरदारी में।

किसी ने अच्छा कहा है। दिए हुए जुबान और काम आया इंसान, ये दो चीज कभी नहीं भूलना चाहिए। जिसे जुबान दिए हुए हो तो ये बात को ध्यान देना चाहिए, और जो तुम्हारे काम आए हैं ऐसा इंसान को कभी भूलना नहीं चाहिए। ये दो चीज है कभी नहीं भूलना चाहिए।

जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय श्री राम, जय हनुमान। शंकर महादेवा जी के आवाज में हम सब हनुमान चालीसा का सुने सुने वालों, आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हुए

और ये जरूर कहना चाहूँगा कि जिंदगी की राह चुनते समय अपने माता पिता के राय अवश्य ले, क्योंकि क्योंकि कहते हैं कि जितनी आपकी उम्र नहीं होती है जितनी आपकी उम्र नहीं होती है उतना उनका अनुभव होता है। तो सुनने वालों जरूर इस बात पे ध्यान दे कि जिंदगी के राह चुनते समय अपने माता पिता की राय अवश्य ले, क्योंकि जितनी आपकी उम्र नहीं होती है उतना उनका अनुभव होता है।

संदेश जरूर आपके लिए रखना चाहूँगा कि उम्मीद हमारी वो शक्ति है जो हमें उस समय भी प्रसन्न बनाए रखती है जब हमें मालूम होता है कि हालात बहुत खराब है।

सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हुए माता पिता के साथ बिताए हुए पल, माता पिता के साथ बिताए हुए पल संभाल कर रखना, क्योंकि ये पल आपको याद तो आएंगे पर वापस नहीं आएंगे। तो जरूर इस बात पे ध्यान देते हुए आज समय निकालिए अपने माता या पिता के अंतर्गत। एक संत ने अच्छा ही कहा है कि चाहे आप सुबह पूजा मत करो पर अपने माता पिता के साथ बिताए हुए पल वो पूजा के समान हो जाता है।

सुनने वालों, मैं हूं आपका सेवक संजय और आपके साथ जुड़े हुए हैं जो इस समय ये कार्यक्रम को सुनते हैं। हार्दिक से स्वागत किया जाता है। जो इंटरनेट द्वारा अपने घर पे सुनते हैं, बहुत बहुत सा और अभिनंदन। जो अपने मोबाइल से सुनते हैं उन्हें भी इंटरनेट द्वारा हार्दिक से अभिनंदन। और जो इस समय अपने गाड़ी से सफर कर रहे हैं उनको बहुत बहुत सा और शुभ दिवस। कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगे। कहते हैं अपने माता पिता, जो माता पिता के चरणों में स्वर्ग कहलाते हैं,

माता पिता को सुन लेने से कितने सारे सवाल सुलझ जाते हैं और किसी ने अच्छे कहा है कि माता पिता के बात सुन लेने से कितने सारे सवाल सुलझ जाती है और सुना देने से हम फिर से वही उलझ जाते हैं।

पिता के लिए उनके बच्चे भी सब दिन कितना प्यारे होते हैं, ये तो हम मेरा राजा मेरा लाल ये सुंदर सा गीत से पता चलेगा।

किसी के दिल में जगह बना लेना जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी है, क्योंकि यही एक जगह है जहां पैसों से घर नहीं बनते।

सुनो लो, आपके लिए हम अपने माता पिता पे और जरूर ध्यान देते हुए माँ तो कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है।

घर से जब शिशु जन्म लेता है तो माता पिता कितना खुश होता है, उस अंतर्गत में हम एक सुंदर सा गीत सुनेंगे।

सूरज कहो या चंदा, ये सुंदर सा गीत एक फूल दो माली से निकाला गया फिल्म जो मन्ना दे के आवाज में और हम सब सुने। तो आपको इस बात को भी पता चल गया होगा कि जब हमारा जन्म होते हैं तो माता पिता कितना खुश होते हैं, समस्त परिवार कितना खुश होते हैं, और प्रकृति क्या करते हैं। जैसे पंछियों अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाकर नहीं देते हैं, वे तो बस उड़ने की कला सिखाते हैं, इसी तरह से हमारे माता पिता हमें चलना सिखाते हैं, दौड़ना सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं, और समय आने पे हम अपना अपना घर बसा लेते हैं ना। तो हम शायद इस बात पे कभी ध्यान नहीं दिए होंगे कि हमारे भाग्य, हमारे स्वभाव और हमारे रूप, ये तीन चीजें है जो हम सबकी अलग अलग होती है, कि हमारे भाग्य, हमारे स्वभाव, हमारे रूप, यही वो तीन चीजें है जो हम सबकी अलग अलग होती है।

औलाद वालो फूलो फलो, कहते हैं कि ना सुख खरीदने पता हूँ, ना दुख बेचने पता हूँ, फिर भी ना जाने क्यों हर रोज कमाने निकल जाता हूँ।

जरूर इन गीतों को सुन करके आज समय जरूर निकालना, अपने माता पिता के लिए, कि वो नहीं होते तो हम कैसे होते।

0: जिनके पिता बहन
1: आ जाना
0: कहते चाहे गुड़िया मत लाना, अपने पिता को भूलना मत।

ये सुंदर सा गीत जो हम सुने कि पप्पा जल्दी आ जाना, और ज्यादा ख्वाहिशें नहीं बस जिंदगी का अगला लम्हा पिछले से बेहतर हो काफी है।

बेटे सुन मेरा कहना, चाहे दुख होए हंसते ही रहना। यही संदेश होते हैं हमारे माता पिता के।

पुण्य कभी किसी को दगा नहीं देता है और पाप किसी का सगा नहीं होता है।

जन्म के रिश्ते ईश्वर का प्रसाद जैसा है, लेकिन खुद के बनाए रिश्ते आपकी पूंजी है। इन्हें बहुत स्नेह कर रखिए। यहाँ तक जो मैं आपके साथ जुड़े रहे, आशा रखता हूँ कि कुछ न कुछ आपको ज़रूर अच्छा लगे होंगे। और हमारे कार्यक्रम जो आगे हमारे कोलेखा साथी लेकर बढ़ाएंगे।

सिरे नामी लोबी सुनाई हमको ते अंदर ते रेगी डांस हॉल के आवास में हमने यहाँ सुने और एक सुंदर सा गीत केती कोती के बारे

echt lobby lobby in deze zware tijden en je blijft van iemand houden, dat is top, top en is top. कहते हैं कि जब तक मेकअप करना है तब तक मेकअप कर लो मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, भाइयों भी मेकअप करता है ये ना मत सोचो। हाँ हाँ कि जब तक मेकअप करना है कर लो, जब तक उम्र है मेकअप करने के लिए कर ले, नहीं तो एक समय ऐसे आ जाएगा जहाँ पर सिर्फ चेकअप करना पड़ेगा, तब मेकअप का खेल बिगड़ जाएगा। सुनेंगे हम आपका फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो से।

हमें नहीं यारों की, बच के रहना दुनिया से, मोटिवेशन रैप सॉन्ग रियलिटी ऑफ फेक फ्रेंड्स। जिंदगी, जिंदगी का सबसे बड़ा राज ये है मेरे दोस्त। हाँ, आप सोचेंगे क्या राज है जिंदगी, तो डोंट वरी, मैं बता रही हूँ ना आपको कि जिंदगी का सबसे बड़ा राज ये है कि ये रुकती कभी नहीं। इसलिए हर पल जी लो मेरे दोस्त, कल का भरोसा कभी नहीं। कल तो दूर है, ये पल का भरोसा कभी नहीं। तो छोड़ो कल की बातें, जो आज है अभी में जी लो। वक्त के साथ सब बदल जाता है, वक्त के साथ सब बदल गया। जी हाँ, ये प्रकृति की हकीकत है कि वक्त के साथ सब बदल गया, जो अपना था वो पराया हो गया। जिंदगी, जिंदगी की इस भीड़ में आज काफी इंसान अकेला हो गया। बात तो

ये भी एक सुंदर सा लाइन है कि कभी वक्त हाथ से फिसल जाता है, कभी वक्त हाथ से फिसल जाता है, कभी अपना भी बदल जाता है। जिंदगी का सच यही है, यहाँ सब कुछ बदल जाता है।

हाँ, हर समय के, हर पल के, हर चीज के यहाँ एक संगीत, उसे संगीत के पोइसी में उतार दिया जाता है जो भी

ये सागर का नाम मैं नहीं दिखती हूँ तो नहीं बता सकती हूँ, पर ये गीत आपको अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, इसलिए मैं चला दी आपके लिए ताकि आप भी कैनस कर लो कि ये सब गीत भी है। कभी जीत तो कभी हार मिलेगी ये तो है ना, कभी जीत तो कभी हार मिलेगी, हर मोड़ पे एक पुकार मिलेगी, जो हिम्मत नहीं हारते कभी। हाँ वो आप भी है मेरे दोस्त जो आप सुन रहे हैं, हाँ आप हिम्मत हारने वाले नहीं है। जो हिम्मत नहीं हारते कभी उन्हीं की, उन्हें ही मंजिल पर, उन्हें ही मंजिल बार बार मिलेगी। जिंदगी को मुस्कुरा के जी लो मेरे दोस्त, जिंदगी को मुस्कुरा के जी लो मेरे दोस्त, हर गम को भुला कर जी लो ना, क्या पता कल हो ना हो, क्या पता कल हो ना हो, आज को खोल के जी लो मेरे।

0: Nederlandse gewij, in Nederland zeggen wij hoe gaat het? In Germany they say danke. Frans में कहते हैं merci. हाँ हाँ ऐसे सभी देश का जो है ना भाषा वही इस गीत में धर देश है बता देश है. In China we say chichi. India में देश है धन्यवाद. और पाकिस्तान में we say शुक्रिया. ऐसे है कई अन्य देश का बता दी है कि हु खातत वहाँ पे सभी भाषा में. दिल को अब किसी से कोई गिला नहीं है. दिल को अब किसी से कोई गिला नहीं. मन से जो भी चाहा वो मिला नहीं. बदनसीबी कहूँ या वक्त की बेवफाई. वक्त बदनसीबी कहूँ या वक्त की बेवफाई. अंधेरे में दिया मिला. अंधेरे में दिया मिला पर वो भी जला नहीं.
1: पक्षियों के साथ खेलते हैं वही खेल एक दिन प्रकृति आपके साथ भी खेलेगी. क्योंकि इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे. जो खेल आप अपने फायदे के लिए दूसरों के साथ खेलते हैं वही खेल एक दिन प्रकृति आपके साथ भी खेलेगी. क्योंकि इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है. आप कितने भी होशियार हों कितने भी चालाक हों लेकिन जिसने दुनिया बनाई है वो आपसे भी ज्यादा होशियार है. हर कर्म का हिसाब जरूर करेगा. दुनिया कमजोर हो सकती है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं. इसलिए जो भी करें सोच समझ कर करें क्योंकि कर्म का हर उधार एक दिन चुकाना ही पड़ता है.

love for you goes on and on. मुझ में लाख बुराइयां होगी मगर मुझ में लाख बुराइयां होगी मगर मैंने किसी से अपने मतलब के लिए रिश्ता नहीं रखा। झूठ बोलकर दिल जीतना नहीं आया मुझे, सच बोलकर कितने लोग गंवा दिया मैंने। दर्द और जिंदगी ऐसा साथ थे जैसे दोनों ने आखिरी सांस तक ही साथ निभाए, जैसे दोनों ने आखिरी सांस तक ही साथ निभाना हो।

कुर्सी नाम जाना है, गाड़ी हीर करना है तो आपको जाना पड़ेगा मखेंता वेक 259 बाय ऑटो फॉर हीर बिड्रेव अमालिया। सेर जुइनिगे ऑटो सोअल्स टोयोटा प्रीमियो, टोयोटा रक्टिस, टोयोटा फिट्स। Contact in Suriname de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597 875739. Contact in Nederland 06 57 418 8873. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel Parkas Gokul op 00 597 875 939. In Nederland 06 574 188 73. Amalia, autoverhuurbedrijf in Suriname.

हाँ हिमेश, ऋषि मियाँ की आवाज में श्रवण की है और कहते हैं, और क्या कहते हैं, रिश्ता वही जो हर हाल में साथ दे, कि रिश्ता वही जो हर हाल में साथ दे, नजरों से नहीं दिल से बस बात करे, हर पल में प्यार है। जी हाँ, हर पल में प्यार है मेरे दोस्तों, हर लम्हे में खुशी है, हर पल में प्यार है, हर लम्हे में खुशी है, कह दो तो यादें है, कह दो तो यादें है, जी लो तो जिंदगी है मेरे दोस्त।

क्या ही पहचान बन गया है रेगी स्टाइल में। आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है आफ्रिका फाहन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है जब हम अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं और आप मैं भी अपने सपने अपने लक्ष्य के पाछे जरूर से दौड़ रहे हैं। हम जरूर से कामयाब होंगे कि छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लो मेरे दोस्त। हाँ कि छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लो, यही आदत तुम्हें हर दिन खुश रखेगा। गिर कर भी जो उठ जाए

हाँ, गिर कर भी जो उठ जाए तो समझना आप सफलता को जरूर से छू लेंगे। मुस्कुराओ तो सही, बेवजह कभी क्या पता ये भी आदत बन जाए। तेरी खुशी से बढ़कर मेरे दोस्त कि तेरी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मुस्कुरा के देखो तो सारा जहां रंगीन है। मुस्कुरा कर तो देखो सारा जहां रंगीन है, वरना भीगी पलकों से तो आईना भी धुंधला दिख।

दिल से कहता है और क्या कहता है, चले हम यहाँ से श्रवण करें उससे बात। उससे पहले ये आपसे बता दे कि जिंदगी एक हसीन ख्वाब है, जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। हाँ, जिसमें जीने की चाहत बस होनी चाहिए। गम जो है ना, खुद ही खुशी में बदल जाएगी, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए बस। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखना, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखना एक बहुत बड़ा हुनर है।

शब्दों पे आप जो गौर करें मेरे दोस्तों, तो अलहिदा है और बहुत इसमें हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मेरी वो खुशी हो मेरे दोस्त कि तुम मेरी वो खुशी हो जिसके बिना मुझे मेरी सारी खुशी अधूरी लगती है। तो आप सोचो आप कितना खुशनसीब हैं और मैं भी कितना खुशनसीब हूँ आप जैसा दोस्त है। जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है मेरे दोस्त कि जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेले है दर्द में अकेले थे अकेले है और खुशी में जमाना है। लगे हाथ ये बता दे हूँ यह सेल्फ फॉरसेकन कंसर्न हूँ यू सेल्फ फॉरसेकन कंसर्न एंड दैट इज आल्स नंबर 1 सेट योर सेल्फ अप नंबर 1 वन यू बेंड बलांगरेक सुख नीत नार खुदकेरिंग ऑफ बफेस्टिंग फन अंदरन गिव योर सेल्फ आंदाग इन प्लास वन आंदाग टू सुकन बाय अंदरन। Stop met jezelf te bewijzen. Wees niet bang om nieuwe dingen te proberen. Omarm verandering. Respecteer jezelf. Durf nee te zeggen. Vertel altijd de waarheid. Durf je kwetsbaar op te stellen. Denk positief. Loop weg als je slecht behandeld wordt. Zorg goed voor jezelf, mijn lieve mensen. Zorg goed voor jezelf. Ben trots op jezelf. Vier je successen. Jij bent genoeg, precies zoals je bent. Geloof in jezelf, elke dag opnieuw. En dit zijn een paar tools hoe je zelfverzekerd

0: कल की हार भी भूल जा और आज
1: अपने उम्मीदों के आगे धोरो, अपने लक्ष्य प्राप्त करो। तुम्हारी खुशी में मेरी दुनिया बसती है दोस्त, तुम खुश रहते हो तो मेरी दुनिया हंसती है। जिस खुशी की तलाश थी, जिस खुशी की तलाश थी हमें, बस वही हो तुम। और ये बात भी सुनो, ये भी बहुत अहम बात है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगा, ना ना, खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर से मिलेगी।

एक बार फिर आपको हार्दिक से स्वागत किया जाता है आज के प्रोग्राम में, इस पल के प्रोग्राम में। खामोशी से मतलब नहीं, खामोशी से मतलब नहीं बातों से है मेरे दोस्त। दिन तो गुजर ही जाएगा, मसला रातों का है। पल ये समय आपको बहुत सारे बधाइयां दे रहे

0: Julia.
1: Dinner at 8?
0: Nah, not tonight, darling. Michael,

यही तो बात है, कल हो ना हो आज तो है, ये पल तो है, इसे में इसी के एक अच्छा यादगार बना लो। मौका इसी पल में है। कल हो ना हो टाइटल सॉन्ग से हमने सुने सोनू निगम जी के आवाज में, रोज सुन सकते हैं इतना मधुर आवाज में, और इसमें कितना मत

स्पेशल स्पेशल सॉन्ग्स आपके लिए चुनकर और लाई हूँ आज के वक्त में। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से हम सब जुड़े हैं, स्पेशल स्पेशल आप ही के लिए है।

इसे जीने के लिए सिर्फ दो ही उसूल बना लो। हाँ, सिर्फ दो, रहो तो फूलों की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। जिंदगी के हम सफर में हो तो बात पे यकीन तो नहीं था, पर तुम आए तो यकीन हुआ। और सफर जो है मोहब्बत ही से भर गया है।

कलम दिल चाहता से सुने हम शेखर महादेवन शान और के की आवाज में कि दिल जो भी कहे परवा नहीं, हम तो अपना राह सीधे चल रहे हैं। इन लीफन हु द्रक यह ओक है मैंने लीफ मेंस भाई और बहनों इन लेफन हु द्रक यह ओक है नेम द तैत नेम द तैत और मैच दीर बारन त प्रातन व दू य आंदर्स में दी तैत अस दर नित मेर सें। अच्छा समय अच्छा गीत आपके लिए हमारे अच्छे अच्छे लोग जो सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। दुनिया के जिस गली में आप जहां भी जैसे भी हो आपका इंटरनेट है तो आप वर्ल्ड वाइड सुन सकते हो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।

हाँ के घुंघरू टूट गए। इसी वक्त वही से मैं यहाँ सोचकर और सोचते रहते कि घुंघरू कैसे ही टूट गए पता नहीं। मेरे दोस्त कहते हैं कि ये कहते हैं कि जैसे सोचोगे वैसा ही बनोगे। विचार ही आपकी पहचान है मेरे दोस्त, विचार ही आपके पहचान है।

फिल्म वॉर से निकाल दिया है जय जय शिव शंकर। सीटी भी बजा दी है, लेर तफर त्रावन।

बालमुआ के बालम और बालमुआ के बालम के बाद हम क्या लाते हैं दोस्तों, भोजपुरी सॉन्ग के मूड में आज हम हो गया है फिर से एक और हो जाए शिवानी सिंह

और पवन सिंह पावर स्टार पवन सिंह का भोजपुरी सॉन्ग है। अब लोग को हम कुछ मिक्स मक्स चलाएंगे, कुछ भोजपुरी कुछ बॉलीवुड सॉन्ग। और यहाँ पे नील कमल सिंह और क्या सुनाते हैं लड़की, ये लड़की क्या है दोस्तों, लड़की दीवानी।

दीवानी नील कमल जिंगा ये सॉन्ग है। तो अगला गीत क्या है दोस्तों, पवन सिंह अस्यल्पा राज का ये सॉन्ग है।

और दोस्तों पवन सिंह का ये सॉन्ग है जो आप लोग को सुनाए हैं और आगे चलते हैं तमन्ना बतिया। तमन्ना बतिया क्यों?

और आज की रात क्या होगा, रात छोड़ो चलो हम लोग बम्बई का रानू देखा जाए।

ही देंगी। बोले पहले सॉरी तो बोल। तो सॉरी कब बोलेंगे दोस्तों? जब सॉरी के कुछ काम, तो सॉरी बोलना कब? जब आप कुछ कसूर करेंगे तब

और तस्वीर से भी और निकर के सामने आ, और कौन आएंगे, महबूबा ही आएंगे हमारे यारो। तो प्यार भरी सॉन्ग है, क्या दिल ने कहा है।

दिल ने कहा आओ क्या मैंने सुना लवली सॉन्ग हम आप लोग को आज सुनाएंगे दोस्तों तेरे नाम लिया और क्या किया क्या किया तेरा नाम लिया और क्या किया सुना जाए।

तो पूछना तो पड़ेगा कि तुम इतने दिन कहाँ थे, कितने दिन कहाँ थे। तो वो कहेंगे कि इतने दिन जहाँ भी थे लेकिन तुझे याद तो हमने किया है। तो अगला प्यार भरी गीत कौन है, क्या है? तो ये कहते हैं कि जब आप कहीं हो और किस उसको कुछ दिन नहीं देखा है तो लगता है कि तुझे हमने कहीं देखा है, लेकिन कहाँ देखा है पता नहीं चलता है। तो अजनबी आपको बताएंगे कि कहाँ तुझे देखा है।

अरे अजनबी, अगर ये अजनबी आप हो तो आपको बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो। अजनबी को बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो। तो अगला गीत की ओर हम बढ़ते हैं। आप सभी को यानी कि शादीशुदा लोग के बारे में आपको हम इस गीत को सुनाते हैं। मौफी का नाम है सौतन ने खतीन्द्रियन तख्त का ये फिल्म है दोस्तों, और ये मूवी है। इसमें एक सुपर हिट सॉन्ग इसमें गाया है की जोड़ दादा ने, आओ सुना जाए। पहले भैया सुरीनाम में लोग जानते थे तो लड़की देखने को तो आते थे कोला, और इस गीत में क्या आते हैं आओ सुना जाए।

ये सॉन्ग है, मोफी के नाम है सौतन दोस्तों, सौतनिया सौतन मोफी के नाम है। इसके बाद हम और आगे को चलते हैं, रोमांटिक सॉन्ग, एक और रोमांटिक सॉन्ग हो जाए आज अलका का, अलका याग्निक और द टाइगर ऑफ इंडिया कुमार कुमार शानू के ओर हम चलते हैं। कौन सा सॉन्ग है दोस्तों, कौन सा सॉन्ग है, नवीन सरवन का म्यूजिक है।

ये दिल आशियाना, और उसके बाद हम चलते हैं। कभी कभी लोग को पूछना पड़ता है और कहते हैं एक बैर खैन अख्तिनवेर, लोग बोलते हैं एक बैर खैन अख्तिनवेर, और एक वा बोले है एक वोर्थ अख्तिन। तो ये गीत 18 बरिस से के उम्र का गीत है दोस्तों, एक सुपरहिट सुपरहिट फिल्म सुहाग का है, जो नई खती हों नई हनन जीफन तख में, और ये मूवी हलचल मचाए थे।

कि उम्र हो गया है तो कोई जतन करना चाहिए। और जतन के बाद हम चलते हैं, क्या आपकी जो आंखें है वो भी काली है? काली है या गोरी है या ब्लू है या लाल है, ये सवाल हम नहीं करता है, करते हैं लवाजी कर करते हैं।

आओ शो मी दे ठुमका, शो मी दे ठुमका, तू झूठी मैं मक्कार। रणधीर का उसके बाद हम चलते हैं नौ टंकी कोड इंस्पेक्टर अविनाश के ओर हम चलते हैं। और नौ टंकी में क्या होता दोस्तों, आओ सुना जाए तू।

और सैयां जे मुझे बुलाएंगे तो कैसे हम नहीं जाएंगे। मैंने भी रान रखी है, तू झूठी है, तू मक्कार है। रणबीर शारदा प्रीतम सीरिया बता रहे हैं देविया का अमिताभ के साथ।

0: और हम भी यहाँ पर पानी पी रखी है। हमारे यारो क्या लोगो तुम, हम चलते गीत को जिसमें अक्षय कुमार ने काम किया है।
1: रूम में रहे

और मेरे जिंदगी में आने को क्या लेंगे तुम। ये गीत गलत गाया गया है कि मेरे जिंदगी में जाने को क्या लोगे, और हकीकत में है उसको कहते हैं कि मेरे जिंदगी में आने को क्या लोगे। तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों कि हमारा जिंदगी में आना है तो आपके फॉरवर्ड क्या है। फॉरवर्ड के बातचीत यहाँ पे हो रहा है दोस्तों, तो आपको हम बता देना चाहते। तो इसके बाद हम जाते हैं चुनरिया के ओर भैया, बीबी नंबर 1 के ओर हम जाते हैं।

और चुनरिया उड़ गया, अगर चुनरिया उड़ गया तो क्या देखने की मिलेगा, आपके ऊपर हम छोड़ देते हैं। और चुनरिया के बाद हम चलते हैं, अच्छा सिला दिया है तूने मेरी प्यार के, जब कभी किसी ने किसी को प्यार में धोखा दिया है तो उस सब के लिए इस गीत को यहाँ से हम चलाते हैं। तो हम यही कहते हैं दोस्तों, दुनिया में धोखा तो कभी देना नहीं चाहिए, लेकिन जिस जिसको आप बहुत चाहते हैं, जिसके आप बहुत चाहते हैं खास करके, उसको कभी धोखा नहीं देना चाहिए। सच्चाई से रहना, झूठ मत बोलना, उपकर्तस्पेलमेंस से, और उसमें आपको जीत होगा। जिस दिन आप सच्चाई से सामना करने को ताकत रखेंगे, और उस दिन आपसे जबर किसी नहीं होएंगे, कभी तुझसे जबर किसी नहीं हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि सच्चाई पे रहना और अपने चाहने वालों को कभी धोखा मत देना, यानी कि धोखा देना अच्छा बात नहीं है। कभी कभी दिल में इतना चोट लग जाता है, उसको कुछ दवा और दारू, दवा दारू उसको ठीक नहीं कर सकता है, और अगर कर सकता है तो फिर से प्यार ही ओके अच्छा कर सकता है दोस्तों। तो हम चलते हैं, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का।

और अच्छा सिला दिया है तूने और दिया है मेरे प्यार को। अगर जब किसी को धोखा देगे प्यार में दोस्तों, तो उसको ये गीत सुनना पड़ेगा। अगर धोखा दिया है तो ये गीत सुनना पड़ेगा। दार इस हेलमाल खीन एक्सक्यूज से फोर फोर दैट ये आश निमांत फोर द खेक हैव हाउड अपन धोखा ना दे लो है तो कि उस पे आपको क्या डर है। चोरी करना डर है, चोरी ना करो किसका डर है। इसके बाद हम चलते हैं मिलने के, तुम कोशिश जरूर करना। मिलने की कोशिश तुमको जरूर करना है। कुमार शानू आशा जी गीत को आप लोग को सुनाएंगे।

टूट जाता है, लेकिन कोशिश करना हमारे यारों कि वादा ना टूटे, वादा टूटना नहीं चाहिए, और खास करके प्यार के वादा। उसके बाद हम चलते हैं झूमे जो पठान, और वो है शाहरुख खान। झूमे जो पठान वो है शाहरुख खान और दीपिका।

कौन गीत हम चलाते हैं, अगर जो किसी के दीवाना हो गया है तो उस दीवानी के लिए ये गीत हम चलाते हैं, अगर जो किसी के ऊपर दीवाना हो गया है तो सब लॉफर्स के लिए ये गीत हम यहाँ से चलाते हैं।

और ऐसी दीवानगी किसको होता है, उसी को होता है जो दीवाना हो जाता है। तो उसी के लिए इस गीत है कि ऐसे दीवानगी देखी नहीं कहीं, और फिल्म के नाम है दीवाना, जिसमें शाहरुख खान, देविया भारती ने काम किए है। एन बेस्ट मैन से वही खान दौर मत ओन से मोय प्रोग्रामा, और लठ लग गए है जिसमें सैफ अली खान ने काम किए है।

0: दिल ना दिया, दिल दिल ना दिया, या दिल दिल ना दिया।
1: The best of Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.

आलो मुस्कुरालो महफिल सजालो, हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत। तो हमारे प्रिय साथियों, आज का इस हसीन प्रोग्राम का शुरुआत मैं करने वाला हूँ हमारे सूरीनाम देश और हॉलैंड देश का एक महान गायक, जबरदस्त बैठक गाना, सेमी क्लासिकल म्यूजिक का महागुरु, मेरे ख्याल से द मैन विद मोस्ट ब्यूटिफुल वॉइस फ्रॉम द बैठक गाना डायनेस्टी, उस्तादों का उस्ताद श्री जगदीश उदित राम जी के ब्यूटिफुल आवाज में आप सुनेंगे ये शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के अमीरों की दुनिया में क्या होता है।

शाबाश शाबाश, जबरदस्त गायक हमारे सूरीनाम देश का, हॉलैंड देश का, जिस पे हमें नाज है, गर्व है, उस्तादों का उस्ताद और एक जबरदस्त महा महा गुरु, हमने बैठक गाना और सेमी क्लासिकल ग्रुप का म्यूजिक जो इसने सुनाया है महफिलों में और कुछ रिकॉर्डे भी वारफान इन फानवतीनेत होत है। फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चून है यारो जोर तोर से आप सरनामी संगीत को सुन रहे हैं। अगला बयान एक और महान गायक हमारे हॉलैंडीज का, द किंग ऑफ बैठक गाना, ये टाइटल ये महान फनकार को मिला है। अगर ये गाना आप सुनेंगे तो आपको भी मालूम हो जाएगा व्हाई ही गॉट द नेम ऑफ द किंग ऑफ बैठक गाना। उस्तादों का उस्ताद मैस्ट्रो संदीप बदलू।

शाबाश महान गायक, ऐसा कलाकार जिसपे हमें नाज है, गर्व है, द किंग ऑफ बैठक गाना, उस्तादों का उस्ताद श्री संदीप बदलू जी। अगला बयान एक और नौजवान कलाकार को लाते हैं प्रोग्राम में और वो सुनाने वाले हैं, एक जबरदस्त गायक ओरिजिनल गाया है महान गायक त्रिनिदाद का श्री यूसुफ खान जी ने, और इतना जवान उम्र में है वो 16 तुनी दित निमर सॉन्ग मैस्ट्रो सुजल उमराव फ्रॉम द एल्बम द बिगेनिंग।

तेतलु लगभग एक घंटे तक लगातार स्पेशल आपके लिए स्पेशल फॉर यू चटनी शो का प्रोग्राम आप सुनेंगे स्पेशल फॉर यू। ये चटनी शो का प्रोग्राम का शुरुआत मैं करता हूँ, मैं चला जाता हूँ त्रिनिदाद से, और त्रिनिदाद से जाऊँगा गयाना, गयाना से सूरीनाम, वहाँ से वापस आ जाऊँगा हॉलैंड देश। और ये शो का प्रोग्राम का शुरुआत करता है आज शाम का, या आज का प्रोग्राम में जो है, शाम हो या रात हो या दिन हो या सुबह हो कोई बात नहीं, हेमलता दीनदयाल, उन्हीं के मीठी आवाज़ में आप सुनेंगे।

0: हुआ हुआ क्या सुखा मिलेंगे आपने सुना त्रिनिदाद या टोबैगो का सॉन्ग भी आपने सुने। अब की बार ट्वेंटी का म्यूजिक रिलीज सोका मेक्स ऑफिशियल इंजी रूम आप सुनेंगे और वो है त्रिनिदाद एंड टोबैगो से।
1: This is not my money spent.
2: Yeah, because I made our money.
3: You can call somebody.
1: You see me trying to get a signal.
3: Oh gosh, well you could ask for a ride or something.
4: Who you wanna ask? Who? I can get a ride, please.
5: Only one ride off. Come now, man. Are you good now?

Not Music Release Soca Mix, सभी आपने सुना. अब की बार West Indian Chutney Music आप सुनेंगे Live Remixes by Murai Bhauji. और गाना का बोल है मोरे भौजी होना चाहिए. और हिमलता दीनदयाल once again प्रोग्राम में.

0: wanneer de zon je wekt in de ochtend, het licht je doet stralen.
1: जब सो का और मेरंगे के बात होता है तो सुंदर पोपो को कभी मत भूलना चाहिए दोस्तों. द किंग ऑफ कैलिप्सो त्रिनिदाद टोबैगो का सुंदर पोपो के आवाज में आप एक कैलिप्सो सुनेंगे.

0: ट्रिनिडाड एंड टोबैगो का अभी चटनी आपने सुना और वो था द किंग ऑफ सोका मिस्टर सुंदर पोपो के आवाज़ में। आपकी बार मैं चला जाता हूँ ट्रिनिडाड टोबैगो छोड़कर गायना कोर दोस्तों, वहाँ पर भी बहुत चटनी सोका लोग गाया है और रशिका दीनदयाल तैयार हो गया है चटनी ऑन द बीच।
1: सिगरेट माना मांगे
2: पीसफुल सॉन्ग्स।

0: आशनी माता दिन के बाद दोस्तों हम चला जाते हो आपन बैठक चटनी स्टाइल। बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, क्रिस राम खिलावन के आवाज में
1: तोरी अखिया हो और पति

मिस्टर क्रिस राम खेलावन की आवाज में भी आप गीत को सुना। मैं वापस चला जाता हूँ हॉलंदेश, द ईगल बॉबलिंग हिट आप सुनेंगे। डीजी विदेश, हर तरफ तेरी जलवा।

तेरी जलवा, हर तरफ तेरी जलवा के बाद दोस्तों जान से जहां सोको मेरेंगे चलता है वहां भी बिगी पोको चाहिए। तो आई वन एसबोम, ये सरनाम जिस मेरे गांव में रहता है दोस्तों, रहता था, तो उन्हीं की आवाज में आप सुनेंगे बिगी स्मार्ट स्टोरी।

सुखा का चटनी आप सुनेंगे। सुखा चटनी में ओल्ड स्कूल सुखा में बेस्ट ऑफ ओल्ड स्कूल सुखा

द मैरी मैन विद बिग बाम्बू, आपको याद है दोस्तों, बीते हुए दिनों में सुनाम जिसमें जब क्रिसमस लगता था करम का पैक पर, तो वहाँ लोग जाकर रेह में खड़ा होकर टिकट खरीदते थे। सुंदर पोपो आते थे त्रिनिदाद टोबैगो से, आते थे गवैया, और ये गीत हमेशा क्रिसमस पे गाया जाता था। द बिग बाम्बू हम सब मिलकर सुनेंगे।

बिग बाम्बू द मैरी मैन की आवाज में भी आपने सुना, तो सबकी बार हम चला जाते हैं सुरनाम देश, और सुरनाम देश के कौन गवैया है, मिस्टर रोमियो दंग कमला कॉम लेट वी गो।

हाय हाय कमली कॉम लेट मी गो नो बाबिल नो बॉडी लाइक टू गो. अब की बार आशनी मता दिन. अपन आशनी है दोस्तों हॉलैंडेस का और आशनी फरमाएगा तोरे बंगले आशनी मता दिन के आवाज में.

आशनी माता दिन नजर लागे तेरे बंगले पर। दोस्तों हमाम स्टोरीज, हमाम स्टोरीज ब्रदर लिव्ड, क्या फरमाएंगे खुद सुनिए।

0: नवा राय
1: राय नवा राय नवा राय एक्सक्लूसिव फॉलोइंग 14 लाठी ना टूटे फसील के आवाज में
2: सुनिए रे हेंड्रिक्स
3: चूसवा आई बॉय नाउ इट इज

है, ऐसा ना हो कि लाठी टूट जाए और सांप न मरे तो क्या होगा दोस्तों? सांप आपको लपेट लेंगे। नो मर्सी चटनी मैच।

गा दीवाने झूम के माइत मुकेश की आवाज़ में आपको सुनाया गया ये गीत। तो चलिए ये बदली हुई गीत हम रखते हैं। हाँ

ये कश्मीर है, ये शानदार गीत आपको सुनाया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है।

को सुनाए हुए रवि के साथ पर फिल्म शहनाई में से निकालकर हम ये गीत पेश किए हैं। चलिए अगला नंबर प्लेयर में ये गीत रखे हैं, इस तरह से सुनते हैं।

दिल से दिल की डोर बांधे ये शानदार गीत चला ऑफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। इस तरह से आ रहा है आपकी मांगी हुई गीत।

रफ़ी साहब का ये गीत है चांद की अंगड़ाई। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है इस तरह से।

मैं आशिक हूँ बहारों का, मैं तो मुकेश, मुकेश जी आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत, जबकि आप भी हैं, आप सुन रहे हैं और मैं दनाख में स्टूडियो में बैठकर चला रहा हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए ये गीत। लता जी और सुबीर सेन, सुबीर सेन के गाना बहुत कम चलता है। अपने हुए पराये में से निकलती फिर सस्त लता जी और सुबीर सेन जी।

लता जी और सुबीर सेन, सुबीर सेन मिलकर ये दोनों ये दुएत आपको सुनाए हैं। फिल्म अपने हुए पराए में से निकाल कर हमने चलाए हैं, निकती फिर शस्त्र का ये गीत है शंकर जय किशन के साज पर। तो चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं कि प्यार में क्या क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, यहाँ तक कि डफली वाला भी बन जाते हैं लोग।

डफली वाले डफली बजा, ये गीत सुनाया गया हमने पेश की ओफर फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं और ऐसे आ रहा है, हाँ इस तरह से है।

फिल्म भीगी रात में से निकाले हैं निकिती फैफन सस्तिक के ये गीत है रोशन के साथ पर रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ में हमने पेश किए। चलिए अगला गीत चलाने वाले हैं, जी हाँ, और वो है मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। क्या ख्याल है

मुझसे भी खफा रहना, माइक मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए हैं। चलिए ये गीत तो सुनाए बिना हम आपको नहीं जाएंगे।

महेंद्र कपूर जी और लता जी मिल के आपको सुनाए हैं। ये प्यारा गीत हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में फिल्म घर बसा के देखो में से हमने निकाल कर ये चलाए हैं।

माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी के साथ ये गीत हम आपको सुनाए हैं। फिल्म फर्श में से निकाल कर हमने पेश की लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर। फाउन हिंदुस्तानी पर आप चून हैं, जो लोग चून किए हैं आपका स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए हम एक सुरेश वादिकर जी के गीत आपको सुनाते हैं। चलो सुरेश वादिकर की आवाज़ में ये गीत।

सुरेश वाडकर आपको सुनाए ये शानदार गीत निगाह यार ने कि एक ऐसा जादू भर दिया, और ये गीत हमने पेश की आज के कार्यक्रम में। अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, जी हाँ, देखते हैं ये प्यारा गीत भी जहाँ तक मेरा ख्याल है फर्श से निकाल रहे हैं, तो इस तरह से हम इसे चला रहे हैं, सुना रहे हैं।

शिकार करने का आए, शिकार होके चले, ये गीत हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। ये अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, और क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ इस तरह से। माइती मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस।

लता जी और माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस दोनों मिलके आपको सुनाई है ये प्यारा गीत हमने पेश की। चलिए एक गीत हमने प्लेयर में रखे हैं और ये भी लता जी के फिल्म है आओ प्यार करें। जी हाँ, तो चलो सुनते हैं आओ प्यार करें में। औरतें गाना तो है लेकिन कौन सा गाना मैं चलाने वाला हूँ लता जी की, ये सुनिए।

So, गाने से पता चलता है से स्टॉकबोट फ्रॉम प्लान। लता जी की आवाज़ में ये शानदार गीत हम आपको सुनाए। योजना तो बहुत बनाया मौसम के देखकर। बहरहाल फ़ौन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा हमने ये गीत पेश की। तो अगर ये गीत पेश की तो चलो हम आपको सुनाते हैं ये गीत उसके बाद।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर ये गीत पेश हुआ, लता जी की आवाज़ में फिल्म आन मिलो सजना में से हमने निकाले हैं और आपको सुनाए हैं। अगला गीत हमने प्लेयर में एक रखे हैं, इसकी थोड़ी बयाना बता देते हैं। ये गीत गाया गया है सी रामचंद्रा जो म्यूजिक डायरेक्टर है, उन्हीं के साज पर लता जी के साथ फिल्म अलबेला में। तो बात ऐसे है कि अब कौन रात्रि के 12 बजे रात्रि को यहाँ स्टूडियो आएगा और बैठकर आपको ये गीत सुनाएगा, मेरे बस के तो बात नहीं है। शायद कभी साल में एक बार हो जाए कि 12 बजे रात्रि को मैं यहाँ आऊँ स्टूडियो में बैठूँ और आपको पहले बताऊँ कि गंगा ये गीत चलाने वाला है, ये नहीं करेंगे। चलिए ये गीत हम अभी आपको सुना देते हैं क्योंकि 12 बजे रात्रि का कौन इंतज़ार करेगा। चलो हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है 12 बजे रात्रि को जलाना चलाना था हम आपको अभी सुना देते हैं इस तरह से।

श्री रामचंद्र के साथ परिचित का रामचंद्र खुद और लता जी के साथ ये द्वैत हम आपको सुनाए हैं फिल्म अलबेलाल में से निकाल कर। अब ये तो ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने कहा कि 12 बजे रात्रि को कोई हमारे को लिखा या मैं आकर ये गीत आपको सुनाऊं तो लगे हाथ हमने अभी आपको सुना दी। यूँ समझिए कि 12 बजे रात्रि है, आपने आँख मूंद ली है, रात हो गया। बहरहाल फॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुने जो चुन किए हैं, इस मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है।

दिल में प्रेम प्यार मोहब्बत के जगह मिले हैं, वह क्या बात है। रफ़ी साहब की आवाज़ में और लता जी आपको सुनाएं ये शानदार गीत। चलिए ये गीत हमने प्लेयर में और रखे हैं, तो क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊं, इस तरह से आ रहा है। नागपंचमी में से नेगेटिव तुम्हें सही फिल्म

वाह क्या बात है, यह शानदार गीत पेश हुआ हमने चलाए हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाते हैं ये गीत। जी हाँ, चलो ये गीत सुनते हैं, इस तरह से आ रहा है।

दोस्तों हम चलते हैं एक मस्त भरी गाना के ओर, लता जी और राजकुमार। और इस फिल्म बहुत पुराना फिल्म है, फिल्म साधना का ये गाना है। लता जी इसमें यानी कि इस गाना को गाया है दोस्तों, और इस गाना आओ मिलकर सुना जाए। कुछ पुराने गाने से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे।

मसी हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, ये एक बहुत मस्त भरी पुराना गाना है दोस्तों, और ये है लता जी इसका गाना, इस फिल्म में यानी कि इस गाना को गाया है। और आगे को हम अगला गाना की ओर बढ़ते हैं, और आज हम आप लोग को मस्त भरी गाना से, और जैसे हर हर प्रोग्राम में चलाते हैं, आज भी हम चलाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम और आगे चला जाएं, और ये भी एक पुराना गाना है, सब कुछ सीखा है हमने, मैं सिर्फ एक ही बात नहीं सीखा है, और वो क्या है भैया, हम तो है अनारी, और ये अगर अनारी होगा तो क्या सीखेंगे, ये बात हम नहीं कहते हैं, मुकेश जी कहते हैं, आओ मिलकर सुना जाए।

0: सब कुछ सीखा हमने और सिर्फ एक बात जो नहीं सीखा है तो वो है होशियारी। दोस्तों होशियारी, हम अपना प्रोग्राम को और आगे को बढ़ाते हैं और मस्त भरी पुराने गाने से आप लोग को आज हम फिर सेवा करेंगे हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों। और कहते हैं जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग तो तुम भी गुनगुनाने लगोगे। तो हमारा आपसे यही बात है कि जो गाना हम यहाँ पर चलाने जाते हैं रवि जी की है फिल्म, जो इसमें काम किए हैं वो शमी कपूर आशा परेक ने। और अगर आप ये गाना सुनेंगे तो मुझे यही विश्वास है, यही गारंटी है कि आप भी गुनगुनाने लगेंगे। मुझे यही उम्मीद है दोस्तों। तो आओ मिल के सुना जाए कि जॉनी कौन गाना द्राई करे कि हमें भी बैठ के गुनगुनाने पड़ेगे। तो आओ सुना जाए।
1: तुमने मुझसे यही सवाल किया था।
2: क्या
1: चलो मैं तुम्हें भूल जाऊं तो?
2: तुमने क्या जवाब दिया?

और जो तुम मुझे भुला ना पाओगे जब तुम मुझको देखोगे तो कैसे आप आएंगे। ये बात मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाई है दोस्तों, अपना प्रोग्राम को हम और आगे को बढ़ाते हैं और आज भी आप लोग के मस्त भरी पुरानी गाने से हम आज आप लोग को सेवा करेंगे। हम चलते हैं, राज कपूर का फिल्म है और मुकेश जी ये गाना को गाए हैं।

उस देश के वासी हम हैं, और वो देश कौन है दोस्तों, जहाँ पे मुकेश रहते थे, और वो है गंगा जहाँ पर बहते हैं, और हम उर देश के वासी है दोस्तों, सूरीनाम के देश के वासी तो हम सब है। और मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाए हैं दोस्तों, जो अगर जो आप मुकेश की सुन चुके होंगे तो हम चलते हैं रफी जी के गाना भी सुनना चाहिए, और वो है इशारों इशारों में। क्या होता है इशारों इशारों में, तो कभी दिल चला जाता है, नहीं दिल को चुरा लेता है, दोनों होता है ना। तो आओ मिलके सुना जाए मोहम्मद रफी जी की आवाज।

इशारों इशारों में दिल देने वाले परमान श्री मोहम्मद रफी की आवाज में इस गाना के आपने सुना है और आशा भोसले की आवाज में दोस्तों। और अगर रफी जी जब पिक सुनाया है तो हम तुरंत जाते करोड़ों दिल को चुराने वाले और वो है मुकेश। फिल्म का नाम है श्री 420 नेकंती होंदित 55 तक का ये फिल्म है जिसमें राज कपूर और नरगिस ने काम किया है दोस्तों। आओ मिलके सुना जाए।

और फिल्म श्री 420 का ये गाना हमने निकाल कर आप लोग को सुना दिए है। नई खतीर 5/5 तक का फिल्म राजकुमार और नरगिस का इस गाना में गाया है मुकेश जी और लता जी। दोस्तों हम बढ़ते हैं फिर अगला गाना की ओर, वो है परमाशी मोहम्मद रफी का ये गाना है और इसमें काम किया है शायरा बानू राजेंद्र कुमार। फिल्म का नाम है अरमान, फिल्म के नाम है अरमान और ये गाना क्या है धोरो मस्त भरी पुरानी गाने से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे। मिशिक है शंकर जय किशन का और इस गाना को लिखा है हसर जयपुर का ये गाना है और आओ मिलकर सुना जाए।

तुम्हारी हर बांस पे है मुझे बहुत नाज दोस्तों। शेरा बानो राजेंद्र कुमार ने फिल्म अरमान में काम किया है और परमाशी मोहम्मद रफी जी के गाना है हसर जयपुर के साथ में। और हम और आगे को चलते हैं अपना प्रोग्राम को लेकर हमारे दोस्तों, और ये फिल्म का नाम है और देवानंद उषा किरण फिल्म का नाम है पतिता का। ये फिल्म है दादा हेमंत कुमार और दीदी लजा जी के आवाज़ में। इस गाना को आओ सुनिए।

दादा हेमंत जी के आवाज में आप लोगों इस गाना को सुना है और एक मस्त भरी रोमांटिक हिंदी सॉन्ग है दोस्तों। इसमें काम किया है देवानंद जी और उषा किरण ने। फिल्म का नाम है पतिता दोस्तों। और उसके बाद हम चलते हैं और एक गाना के ओर और वो भी है फिल्म के नाम है, ये भी एक बहुत पुराना फिल्म है, अलबेला का ये गाना है। हमारे दोस्तों लता जी इस फिल्म में इस गाना को गाया है और इसमें भगवान ने बहुत कमाल किया है दोस्तों। आओ मिल के सुना जाए ये गाना क्या है भाई, बहुत पुराना गाना है ये, और सुना जाए।

भोली सूरत दिल के खोटे और नाम बहुत बड़ा है कितरूर कितरे को, लेकिन कर्म बहुत छोटे है दोस्तों। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े हैं बाकी दिल से बहुत खोटे हैं हमारे दोस्तों। और हमारे दोस्तों, और ये गाना को जिसके सपने में हम रोज आते हैं, और महेंद्र कुमार और लता जी बताए गए हैं, नई खंती सेफन तक का ये गाना है, आओ मिल के सुना जाए।

जिसके सपने हमें रोज आते रहे और गुना गुनगुनाते रहे, वो कहती कि क्या तू ही रह ले भैया। और जो गाना अब हम आप लोग को सुनाएंगे ये है गोरी तेरी नैनों में हम बस गए हैं, हम बस गए हैं। गोविंदा करिश्मा का ये फिल्म है और ये गाना को गाया है हमारा कुमार शानू, कुमार शानू।

0: वफा जिन से।
1: अभी आप सुन रहे थे वफा जिन से की बेवफा हो गए, वो वादे मोहब्बत में क्या हो गए। दमायती मुकेश जी प्रोग्राम में फिर से आने वाले हैं। तू मिले तो पूछूं तुझसे, क्या है ये न्याय तेरा।

दमाईती मुकेश जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे। तो मिले तो पूछूं तुझसे, क्या ये है न्याय तेरा, दुनिया को दिए उजाले और मुझको दिया अंधेरा। मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी और वो ये है, जो जितना दूर होता है नज़रों के, उतना ही वो दिल के करीब होता है। मुश्किल से भी जिसके एक झलक देखने को मिले, वो ज़िंदगी में सबसे ख़ास होता है। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं, फ्रॉम द मूवी एक थी रीता से आप सुनेंगे, मैं किसे अपना कहूँ आज मेरा कोई नहीं, लता जी के साथ में, द मैन विद द गोल्डन वॉइस मुकेश जी प्रोग्राम में आ रहे हैं।

मूवी एक थी रीता से अभी आप सुन रहे थे। मैं किसे अपना कहूँ, आज मेरा कोई नहीं। जब कोई इंसान अपना दर्द किसी से नहीं कह पाता है, जब कोई इंसान अपना दर्द किसी से नहीं कह पाता है, तो वो उस दर्द को अपने डीपी या स्टेटस लगाकर बताने की कोशिश करता है। बस ज़रूरत होती है तो उस इंसान की जो उसे समझे। अभिलाषा है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं वादियाँ मेरा दामन।

फ्रॉम द मूवी अभिलाषा से हमने पेश किए हैं वा दिया मेरा दामन रास्ते मेरी बाहें जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। लता जी आपको सुनाने वाले थे। मांगी थी मैं यानी मांगी थी मैंने दुआ रब से देना तो कुछ ऐसा दो जो हो अलग सबसे रब ने मिला दिया हमको आपसे और कहा बस यही कार्टून डिफरेंट है सबसे। फ्रॉम द मूवी आया सावन झूम के इसी फिल्म से हम पेश करेंगे किसी ने कहा है मेरे दोस्तों बुरा मत सुनो बुरा मत देखो बुरा मत कहो। मोहम्मद रफी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी आया सावन, झूमके से अभी आप सुन रहे थे। सुनने वालों, शर्ली जी भी प्रोग्राम को सुन रही है और ये गीत खास करके हम पेश करते हैं शर्ली जी के वास्ते और सभी प्यारे प्यारे सुनने वालों के लिए। जाने कैसा है मेरा दीवाना, कभी अपना सा लगे तो कभी बेगाना। फ्रॉम द मूवी आंसू बन गए फूल से आप सुनेंगे किशोर दा और आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं।

जाने कैसा है मेरा दीवाना, कभी अपना सा लगे कभी बेगाना। फ्रॉम द मूवी आंसू बन गए फूल से हमने पेश किए हैं, और ख़ास करके ये गीत हमने पेश किए हैं शर्ली जी के वास्ते और सभी प्यारे प्यारे सुनने वालों के लिए। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, लता जी प्रोग्राम में आ रहे हैं। फ्रॉम द मूवी आंखें से आप सुनेंगे।

0: करते कभी कभी।
1: अभी आप सुन रहे थे मिलती है मोहब्बत यानी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, लता जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी आंखें से हमने पेश किए हैं। रोने से किसी को पाया नहीं जाता, खोने से किसी को भुलाया नहीं जाता, क्योंकि वक्त तो सभी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, मगर बीता हुआ वक्त कभी लाया नहीं जाता। मुझे ऐसा मिला मोती फ्रॉम द मूवी पिघलता आसमां से हम पेश करेंगे आप सभी के वास्ते, लता जी प्रोग्राम में आ रहे हैं।

आप सुन रहे थे मुझे ऐसा मिला मोती, ऐसा मोती कोई अंबर में ना होगा। लता जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी पिघलता आसमां से हमने पेश किए हैं। दुनिया को हकीकत मेरी पता कुछ भी नहीं, इल्जाम हजारों है और खता कुछ भी नहीं। मेरा दिल में क्या है ये पढ़ ना सकोगे, सारे पन्ने भरे हैं और लिखा कुछ नहीं। चला भैया आजा रसिया, फ्रॉम द मूवी मन की आंखें से हम पेश करेंगे आप सभी के वास्ते। लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे चला भैया आजा रसिया फ्रॉम द मूवी मन की आंखें से हमने पेश किए हैं मोहम्मद रफ़ी और लता जी आपको सुनाने वाले थे। किसी के आने से जिंदगी नहीं चलती और किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस इंसान कभी कभी थक हार कर रुक जाता है, इसी का नाम जिंदगी है। और मैं आप सभी से भी यही कहना चाहूँगी कि वो ये है कि न कभी वक्त ठहरता है और न कभी जिंदगी ठहरती है, बस हम लोगों को आगे जानी चाहिए। हम दोनों मिल के कागज़ पे दिल के यानी कागज़ पे दिल दे चिट्ठी लिखेंगे, जवाब आएगा, ज़रूर आएगा अगर आप चिट्ठी लिखेंगे तो। तुम्हारी कसम है फिल्म का नाम, दमायती मुकेश जी के साथ में आशा जी आपको सुनाने वाले हैं।

फनहाउस हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फनहाउस के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा फनहाउस हिंदुस्तानी रेडियो।

अभी आप सुन रहे थे शीघ्र होता है जब कयामत का, अदवाइती मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी माइल ऑफ से हमने पेश किए हैं। रुक जा ऐ हवा, लता जी आपको सुनाने वाले हैं। ये सुंदर सा गीत आप सभी के वास्ते हम पेश करते हैं। फ्रॉम द मूवी शागिर्द से आप सुनेंगे।

अभी आप सुन रहे थे रुक जा ए हवा, हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते। इंसान का जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल है। अगर दिल ही साफ नहीं तो चमकते चेहरे का कोई फायदा नहीं। फ्रॉम द मूवी आरसू से हम पेश करते हैं, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं और गीत का बोल है।

अभी आप सुन रहे थे एनर्जी से मस्ताना, बस इतनी शिकायत है। एक बहुत सा सुंदर सॉन्ग हम चुन कर रखे हैं आप सभी के वास्ते, और लता जी आपको सुनाने वाले हैं मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ, और वो ये है, ज़िंदगी सब्र करना सिखाती है, ज़िंदगी सब्र करना सिखाती है और सब्र जीना सिखाता है।

लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए। जिंदगी तो हल्की फूकी सी है, जिंदगी तो हल्की फूकी सी है, सरा बोझ तो ख्वाहिशों का है। मैंने देखा तूने देखा फ्रॉम द मूवी दुश्मन से हम पेश करते हैं लता जी के साथ में किशोरदा आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे मैंने देखा तूने देखा, लता जी के साथ में किशोर दा आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी दुश्मन से हमने पेश किए हैं। कोशिश करना कि जिंदगी में वो शख्स आपको हमेशा मुस्कुराता हुआ मिले, जो आपको रोज आईने में दिखाई देता है। कान में झुमका, चाल में झुमका, फ्रॉम द मूवी सावन भादो से हम पेश करते हैं। मोहम्मद रफी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे कान में झुमका, जाल में ठुमका, लगे पशासी झटके। और अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो ये है। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं सर आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी, और वो ये है, इंसान तो हर जगह पैदा होते हैं मगर इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। कहाँ चल दिए इधर तो आओ, फ्रॉम द मूवी झुक गया आसमां से हम पेश करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे झुक गया आसमां से, कहाँ चल दिए इधर तो आओ मेरे दिल को न ठुकराओ, बोल सितमगर मान भी जाओ। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। हाँ, मैंने भी प्यार किया मुकेश जी के साथ में सुमन कल्याणपुर जी आपको सुनाने वाले हैं। लोग हमारी कदर उस वक्त नहीं करते जब हम अकेले हो, बल्कि उस वक्त करते हैं जब वो अकेले हों।

फ्रॉम द मूवी बूंद जो बन गए मोती, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं मोहम्मद रफी जी और सुमन कल्याणपुर जी आपको सुनाने वाले थे। प्रोग्राम को हम और आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों, और मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, मंजिल इंसान की हौसले आजमाती है, किसी भी बात से हिम्मत ना हारना मेरे दोस्त, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। आप यहाँ आए किस लिए, किशोर दा आपको सुनाने वाले हैं साथ में आशा जी के साथ।

0: ना पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: आज देखिए तो क्या हसीन रात है।
1: ओहो काम तो बताइए बताइए।
0: ना ना ना पहले

0: जरा थाम लो, बार बार पूछो ना, दिल से भी काम लो।
1: काम तो बताओ।
0: काम सीधा साधा है,
1: बोलो बोलो।
0: आज लेना एक वादा है।
1: क्या?
0: आजा आजा, शादी का इरादा है।
1: क्या?
0: शादी का इरादा है।
1: शादी
0: का इरादा है।
1: शादी ना बाबा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं, सुनो तो, सुनो तो, सुनो तो। आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए।
2: अभी आप सुन रहे थे आप यहाँ आए किस लिए, आशा जी के साथ में किशोर दा आपको सुनाने वाले थे। सुंजा आ ठंडी हवा, थमजा ए काली घटा। आप सुनेंगे, लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी, और वो ये है, कुछ मजबूत रिश्ते बड़ी खामोशी से बिखर जाते हैं, कुछ मजबूत रिश्ते बड़ी खामोशी से बिखर जाते हैं, कुछ लोग खुद टूट जाते हैं दूसरों की खुशी के लिए।

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतोने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 7 3 2 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

उठो ना रूठो मेरी जान, मोहम्मद रफी जी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी जवान मोहब्बत से। चलिए मिलकर सुनते हैं।

वही आप सुन रहे थे ना रूठो रूठो ना रूठो ना रूठो मेरी जा, फ्रॉम द मूवी जवान मोहब्बत से अभी हमने पेश किए हैं और आपको सुनाने वाले थे आशा भोसले के साथ में मोहम्मद रफ़ी जी। धड़कन है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मैं तो चला जिधर चले रास्ता।

मैं तो चला जिधर चले रास्ता भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी परवाना से हमने पेश किए हैं। जिस दिन से मैंने तुमको देखा है उस दिन में एक सपना सा जगह है। मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी परवाना से हम पेश करते हैं।

फ्रॉम द मूवी वारिस से हमने पेश किए हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में लहरा के आया है झोंका बहार का। ओ दिलबर जानिए तेरे हैं हम तेरे, फ्रॉम द मूवी हसीना मान जाएगी।

ओ दिलबर जानिए तेरे हैं हम तेरे। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी हसीना मान जाएगी से हमने पेश किए हैं। प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं और अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो है आशा भोसले और किशोर डा की आवाज़ में आप सुनेंगे दूरियां नज़दीकियां बन गई अजब इश्तफाक है।

दूरियां नजदीकियां बन गई जब इश्तफाक है, आशा भोसले के साथ में किशोरदा आपको सुनाने वाले थे। जवान तुम हो जवान हम है, ये प्यार तुमसे हो गया है, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले ज़रा मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ, और वो ये है, ज़माने वाले हमें इतना गरीब समझते हैं, ज़माने वाले हमें इतना गरीब क्यों समझते हैं, उनको मालूम नहीं कि हम दर्द की दौलत से मालामाल हैं।

अभी आप सुन रहे थे जवान तुम हो जवान हम है, ये प्यार तुमसे हो गया है। मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं। फ्रॉम द मूवी जीवन रेखा से हम पेश करते हैं यार मेरे मेरी बाहों में आ जा, और ये गीत हम पेश करके हैं खास करके दो व्यक्ति के वास्ते, यानि विद्या जी और संता जी के वास्ते, जबकि ये दोनों प्रोग्राम मिलकर सुन रहे हैं। तो चलिए ये गीत हो जाए उन दोनों के नाम।

मोहम्मद रफी जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी जीवन रेखा से हमने पेश किए हैं यार मेरे मेरी बाहों में आजा और ये गीत हमने पेश किए हैं विद्या जी और शांता जी के वास्ते जबकि ये दोनों प्रोग्राम सुनते हैं। दिल बेकरार सा है

मोहम्मद रफीजी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे दिल बेकरार सा है। मोहम्मद रफ़ी प्रोग्राम में फिर से आ रहे हैं। सुनने वालों, जियाओ जियाओ जिया, कुछ बोल दो।

अभी आप सुन रहे थे जियाओ जियाओ जिया कुछ बोल दो, गुमराह है फिल्म का नाम। और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं महेंद्र कपूर और आशा भोसले जी की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे इन हवाओं में इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकारे, फ्रॉम द मूवी गुमराह से हमने पेश किए हैं। साथिया नहीं जाना के जी ना लगे, मौसम है सुहाना के जी ना लगे, फ्रॉम द मूवी आया सावन झुमके, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं।

मोहम्मद रफ़ी और लता जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी आया सावन झूम के इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं साथिया नहीं जाना के जी ना लगे कुछ कहता है ये सावन क्या कहता है। लता जी के साथ में मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी मेरा गांव मेरा देश।

कुछ कहता है ये सावन, भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी मेरा गांव मेरा देश, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। चाहे रहो दूर चाहे रहो पास, सुन लो मगर एक बात। आपको सुनाने वाले हैं किशोर डा के साथ में लता जी, और फिल्म का नाम है दो चोर।

अभी आप सुन रहे थे चाहे रहो दूर चाहे रहो पास, सुन लो मगर एक बात। प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों, और अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं फ्रॉम द मूवी ब्लैकमेल से हम पेश करते हैं पल पल दिल के पास तुम रहती हो। किशोर दा आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे पल पल दिल के पास तुम रहती हो। आज मदहोश हुआ जाए रे फ्रॉम द मूवी शर्मिली से हम पेश करते हैं किशोरदा और लता जी आपको सुनाने वाले हैं और म्यूजिक दिए हैं एस दे बर्मन जी।

अभी आप सुन रहे थे आज मदहोश हुआ जाए रे मेरा मन मेरा मन मेरा मन, द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में आप सुनेंगे, साथ में सुमन कल्याणपुर आपको सुनाने वाले हैं। तो सबसे हंसी है दिलरुबा फ्रॉम द मूवी रामू तो दीवाना है।

सुमन कल्याणपुर और नमाइटी मुकेश जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे तो सबसे हंसी है दिवरुआ। रिश्तों से बड़ी चाहत क्या होगी, रिश्तों से बड़ी चाहत क्या होगी, दोस्ती से बड़ी इबादत क्या होगी, जिसे दोस्त मिल जाए तुम जैसा उसे ज़िंदगी से फिर शिकायत क्या होगी। ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी सारा सारा है। लता जी के साथ में मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी धरती से हम पेश करते हैं।

फ्रॉम द मूवी धरती से हमने पेश किए हैं। ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज़्यादा ज़्यादा है, भी आप सुन रहे थे। जिसके सपने हमें रोज़ आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं। फ्रॉम द मूवी गीत से हम पेश करते हैं लता जी के साथ में, महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले हैं। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी, और वो ये है, खामोश चेहरे पर हज़ारों पहरे होते हैं, खामोश चेहरे पर हज़ारों पहरे होते हैं, हंसती आँखों में भी जख्म गहरे होते हैं।

लता जी के साथ में महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी गीत से हमने पेश किए हैं, जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं। प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों। दिल से चाहने वाले लाइफ में एक बार मिलती है, दिल से चाहने वाले लाइफ में एक बार मिलते हैं, उन्हें कभी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से खो मत देना। हम हैं प्यार की डगर के दो मुसाफिर, फ्रॉम द मूवी दो मुसाफिर से हम पेश करते हैं मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में, लता जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे हम है प्यार की डगर के दो मुसाफिर। सुनने वालों, एक गीत पेश करने से पहले ज़रा मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी, और वो ये है, हंसते रहोगे तो दुनिया साथ है, हंसते रहोगे तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आँखों में भी जगह नहीं मिलती। हम ना कभी होंगे जुदा, मौत हमें आए तो क्या, फिर जन्म लेंगे हम। किशोर डा के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले हैं। चलिए ये सुंदर सा गीत मिलकर सुनते हैं।

मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे रंग और नूर की बारात, किसे पेश करूं। नादान है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं जीवन भर ढूंढा जिसको।

का नाम है नादान और इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं जीवन भर ढूंढा जिसको वो प्यार मिला पर नहीं मिला, द मायती मुकेश जी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे। आशा भोसले जी प्रोग्राम में आ रहे हैं, फ्रॉम द मूवी ढूंढ से हम पेश करते हैं उलझन सुलझना।

अभी आप सुन रहे थे उलझन सुलझे ना, रास्ता मुझे ना, जाऊं कहां मैं, जाऊं कहां, फ्रॉम द मूवी ढूंढ से हमने पेश किए है आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले थे। सबर रखे ना धूप रहती है ना छाव रहती है, सबर रखे ना धूप रहती है ना छाव रहती है देर तक। पगला कहीं का है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं तुम मुझे यूं भूला ना पाओगे।

पगला कहीं का है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हमने पेश किया है मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में तुम मुझे यूँ भूला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग भी तुम गुनगुनाओगे। जो लोग तन्हाई पसंद करते हैं, जो लोग तन्हाई पसंद करते हैं उनको समझना आसान नहीं होता। मुकेश जी प्रोग्राम में आ रहे हैं, काश के मेरा कोई सहारा होता।

दमाईती मुकेश जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे काश के मेरा कोई सहारा होता, आज मैं काहे को आवारा होता। प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों, लेकिन मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी और वो ये है, काश लोग ये समझ जाए कि रिश्ते एक दूसरे की फिक्र करने के लिए होते हैं। काश लोग ये समझ जाए कि रिश्ते एक दूसरे की फिक्र करने के लिए होते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। लता जी और मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं। तेरी नीली नीली आँखों के दिल पे तीर चल गए।

अभी आप सुन रहे थे तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे तीर चल गए, लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी जाने अनजाने। जाइए आप कहाँ जाएगी ये नजर लौट के फिर आएगी। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी के वास्ते कुछ कहना चाहती हूँ, और वो ये है, खास है वो लोग जो वक्त आने पे वक्त दिया करते हैं। मेरी सनम है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं जाइए आप कहाँ जाएगी ये नज़र लौट के फिर आएगी। और ये खास गीत हम पेश करते हैं शर्ली के वास्ते।

आप कहाँ जाएगी ये नज़र लौट के फिर आएगी। और ये गीत हमने पेश किए थे शर्ली जी के वास्ते। रिश्ते ज़रूरत के हो तो कभी खुशी नहीं देते, रिश्ते ज़रूरत के हो तो कभी खुशी नहीं देते, और जज्बात के हो तो कभी साथ नहीं छोड़ते। मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आए आ रहे हैं सुमन कल्याणपुर के साथ, तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे। और ये गीत हम पेश करते हैं धीरज की तरफ से आरती जी के वास्ते, बहुत बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ।

मोहम्मद रफ़ी जी भी आपको सुनाने वाले थे। जब मोहब्बत जवान होती है, हर अदा एक जवान होती है, और ये गीत हमने पेश किए हैं ख़ास करके धीरज की तरफ से, आरती जी के वास्ते, बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ। खामोश रहो सिर्फ खुदा ही है, खामोश रहो सिर्फ खुदा ही है जो तुम्हारे दिल का बोझ उतार देगा। बाहोशो हवाश में दीवाना, मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं।

मोहम्मद रफ़ी जी अभी आपको सुनाने वाले थे बाहोशो हवास में दीवाना। इस हिस्से में एक आखिरी गीत हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। मोहम्मद रफ़ी जी सुमन कल्याणपुर रिजी म्यूकर सुनाते हैं, कह दो जहाँ से कह दो इश्क पर जोर नहीं।

जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे। ये गीत चला ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। स्वागत करते हुए चलिए हम पेश कर रहे हैं ये गीत।

देखती हूँ जिधर, फिल्म हांगकांग में से। जी हाँ, फिल्म हांगकांग में से निकाले हैं ये शानदार गीत और हमने पेश किए है ओपन एयर के साज पर निगतिन त्वेयन सस्त का ये फिल्म है आशा जी की आवाज़ में। चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं। ओ क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ इस तरह से।

सुन जा ऐ घटा काली घटा बस एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी हाथी मेरे साथी में से निकाले निगत एने से तो का ये फिल्म लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। अगला गीत हमने प्लेयर में आपको पता है हमने क्या रखे हैं, चलो सुनते हैं कि लता जी, जी हाँ लता जी की क्या मुसीबत है, लता जी के समझ में कुछ नहीं आ रहा है, चलो सुनते हैं वो खुद कह रही है क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, चलो सुनते हैं। मजा ही आ रहा है या नहीं, इस बात की मजा आ रहा है नहीं पता।